सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

0: अहद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल

0: और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हे हंस वाहनी माँ, हमें ज्ञान रतन देना, संगीत कला वाणी विद्या का धन देना। तुम ज्ञान की हो देवी, हम सब अज्ञानी हैं, हर शब्द है तुमसे ही ये वाणी है। हमें ज्ञान के अमृत का सागर मंथन देना, हे हंस वाहनी माँ, हमें ज्ञान रतन देना। अज्ञान तिमिर हर के अब ज्ञान प्रकाश करो, हे वीणा वादिनी माँ, वाणी में वास करो। औरों के जो काम आए ऐसा जीवन देना, ए हंस वाहनी माँ, हमें ज्ञान रतन देना।

जन्मे थे वो मथुरा में और वृंदावन में खेले थे। महाभारत के नायक थे और अर्जुन जिनके चेले थे। बाल कृष्ण की ऐसी लीला सबको ही हर्षाती है, बड़े बड़े असुरों की कुछ भी न चल पाती है। दिखते थे वो भोले भाले सांवले।

कमली वाले की कैसी निराली है शान, जिसकी एक झलक पर न्योछावर है मेरी जान। हर धड़कन में बसती है सूरत तेरी प्यारी, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही है रहबर हमारी। दूर कर दे हर अंधेरा, तू ही तो नूर है मेरा। इस रूह की प्यास का तू ही तो सुरूर है मेरा। तेरे दर पर आकर मिलती है इस दिल को हर खुशी, कमली वाले अब तो तू ही है मेरी जिंदगी।

अंबर से ऊँचे हैं बाबा, ज्ञान की जिनकी पावन धारा, सबको सच्चा मार्ग दिखाया, जग का कल्याण ही जिनका नारा। सर झुकाकर करते हैं वंदन उस परम ज्ञानी उस महान संत को, गुरु नानक के चरणों में है जीवन, जो हर लेते हैं मन के द्वंद्व को।

अहंकार में डूबा मानव भूल गया है ज्ञान, काम क्रोध और लोभ में उलझा बना जगत में शैतान। पल पल झूठ को सच समझकर करता पाप अपार, माया के इस जंजाल में फंसा भूला अपना संसार। मन में कपट और द्वेष छिपाए करता मीठी बात, अवगुणों की चादर ओढ़े बीते दिन और रात। छोड़ के अपनों की पीड़ा निज स्वार्थ को अपनाए, सुख में तो ईश्वर को भूले दुख में प्रभु को ध्याए। त्याग दे जब मन के अवगुण और भक्ति में लीन हो जाए, कणकण में बसे ईश्वर का हृदय में दर्शन हो जाए। नाम सिमरन और सच्ची श्रद्धा भव से पार लगाती, इंसान को निर्मल कर देती,

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे

इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में स्वर थे लखवीर सिंह लखा, हेमा मालिनी, सखावत हुसैन, रविंद्र सिंह रागी और अनूप जलोटा के।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मानव इस सृष्टि पर जब से अवतीर्ण हुआ है, उसने उसी समय से संगठित होकर अपना एक क्षेत्र व समाज बनाया है। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक कितने संगठन व समाजों का निर्माण हुआ है, लेकिन मानवीय हृदय की वेदनाओं को झंकृत करने वाली भावनाएं मनुष्य ने आपसी व्यवहार से सीखी हैं। प्रेम एक ऐसा बीज मंत्र है जो कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। प्रेम एक ऐसी भावना है जिससे मनुष्य समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है। भाईचारा अर्थात बंधुत्व भी उसी से प्रकट होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही स्वार्थ परता संकोच है, इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला जीता है और स्वार्थी मरता रहता है। इसलिए प्रेम प्रेम ही के लिए करो, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसा ही आधार है जैसा कि जीने के लिए श्वास लेना, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ कार्य आदि का यही रहस्य है। प्रेम से ही बंधुत्व का विस्तार होता है। प्रेम के संबंध में ही नारायण स्वामी कहते हैं कि विधि निषेध श्रुति वेद की मेल देत सब मेट, नारायण जाके हृदय लागत प्रेम। रिपीट। महात्मा गांधी जी ने प्रेम और बंधुत्व के लिए जीवन भर संघर्ष कर मनुष्य समाज को यही कहा कि बंधुत्व की भावना से रहो, न कोई ऊंचा है और न नीचा। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि अयम निजा परावेति गणा लघु चेतसाम, उदार चरिता नामतु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी बातें तो अल्प बुद्धि वाले ही करते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रेमी है, उदार है, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि पहले रोटी और फिर धर्म। सब विचारे दरिद्र भूखों मर रहे हैं, तब हम उनमें व्यर्थ ही धर्म को ठूसते हैं। किसी भी मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप नहीं तड़प उठते, जब तक उन्हें अपने शरीर का ही अंग नहीं समझते, जब तक ये अनुभव नहीं करते कि तुम और ये, दरिद्र और धनी, संत और पापी, सभी उस एक असीम पूर्ण के लिए जिसे तुम ब्रह्म कहते हो अंश हैं, तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। आपसी भाईचारा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है और समाज से संगठित रह सकता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। संप्रदाय या जाति तो मनुष्य मात्र की ही बनाई हुई है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का रक्त अलग अलग रंग का होता है? या वो परम पिता परमात्मा जब मनुष्य को पैदा करता है तो उसकी आकृति में कोई अंतर कर देता है? यदि ऐसा नहीं है तो मनुष्य आपस में क्यों एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाता है, जबकि उसमें प्रेम और बंधुत्व की भावना ही नहीं है? जो व्यक्ति आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि अपने विचारों को ऐसा बनाए जिससे उसके मन में किसी के प्रति बैर विरोध की भावना उत्पन्न ही न हो। यदि उसके विचार किसी के विचारों से मेल नहीं खाते तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ अधिक संपर्क ना रखे। यदि उसके साथ व्यवहार पड़ता भी हो तो ऊपर ऊपर से बरतते हुए जीवन के चार दिन खुशी खुशी व्यतीत करें। यदि वो किसी समय कोई अनुचित व्यवहार भी करे तो उसे सहन करते हुए लड़ाई झगड़े से बचें। इस प्रकार किसी के प्रति न तो कटु वचनों का प्रयोग करना चाहिए और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा ही करना चाहिए। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, भक्ति पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हुए, बंधुत्व की भावना के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जैसा कि संत तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नहीं नाव संजोग।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर विनय वर्मा से एक जानकारी। विषय है दंत विकार और घरेलू नुस्खे।
2: स्वास्थ्य संदेश के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, दांत शरीर का एक ऐसा अंग है जो आपके व्यक्तित्व के आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप बात करते हैं, मुस्कुराते या हंसते खिलखिलाते हैं, तो दुग्ध धवल मोतियों जैसे दांतों की पंक्ति आपके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। किंतु यदि आपके दांत गंदे तथा सांस दुर्गंध युक्त है, तो इससे अधिक अप्रिय और कुछ नहीं हो सकता। अधिकांश व्यक्ति शीघ्रता से दांतों की आधी अधूरी सफाई करके संतुष्ट हो जाते हैं। इसी लापरवाही का परिणाम होता है दांतों की अनेक समस्याएं। अतः उचित यही है कि प्रतिदिन दांतों की भली भांति सफाई की जाए। दांतों से संबंधित तीन समस्याएं मुख्य हैं, दांतों में सड़न, मसूड़ों में दर्द सूजन तथा दांतों से खून का रिसना। जहाँ तक दांतों की सड़न का सवाल है, तो दांतों पर कीटाणुओं द्वारा निर्मित सफ़ेद पपड़ी अर्थात फ्लॉक ही दांतों में सड़न का कारण है। यह दांतों के इर्द गिर्द बीच में तथा मसूड़ों के नीचे बनता है। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। 20 बूंद लहसुन का रस एक चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से दांतों की सड़न, दर्द एवं बदबू दूर होती है। एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर घूंट भरें। 15 मिनट मुंह में रखने के बाद उसे पी जाएं। दांतों की सड़न, मसूड़े की सूजन और बदबू समाप्त हो जाएगी। मसूड़ों में दर्द सूजन, राई या सरसों के तेल में बारीक नमक मिलाकर मंजन करने से दांत तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। इससे दांत व मसूड़े के दर्द में आराम भी मिलता है। मसूड़े के दर्द में हल्दी के टुकड़े मुंह में डालकर चूसें। दाढ़ के दर्द में नमक मिले अदरक के टुकड़ों को चूसना लाभदायक होता है। मसूड़े में सूजन होने पर हरा पुदीना पानी में उबाल लें और उस पानी के कुल्ले करें, तत्काल आराम मिलता है। पानी में मेथी उबालकर उसके कुल्ले करने से मसूड़ों को आराम मिलता है। दांत के दर्द और मसूड़ों में सूजन होने पर लहसुन को पीसकर उससे धीरे धीरे मालिश करने से आराम मिलता है। प्याज के रस को मसूड़ों पर मलने से मसूड़ों की सूजन कम होती है। यदि भुने सुहागे के साथ काली मिर्च पीसकर मसूड़ों के घावों पर लगाया जाए तो मसूड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। दांत दर्द में लौंग का तेल लगाने से भी आराम मिलता है। इससे सूजे हुए मसूड़े भी ठीक हो जाते हैं। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है और दांत मजबूत होते हैं। दांतों के दर्द में तुलसी के ताज़ा पत्ते तथा काली मिर्च पीसकर दांतों के नीचे रखने से दांत का दर्द चला जाता है और दांत के दर्द में दालचीनी के तेल का फाहा लगाने से तत्काल आराम मिलता है। तो श्रोताओं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे दांत स्वस्थ रहें, तो इन उपायों को घरेलू उपचार के रूप में अपना सकते हैं और अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में बस जानकारी यहीं तक। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
0: दंत विकार और घरेलू नुस्खे। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर विनय वर्मा से एक जानकारी सुन रहे थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ढूंढता है। प्रस्तुति हसीम सक्सेना की होगी। समय याद रखिए, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ढूंढता है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा रात्रि 9:30 पर। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल रात्रि 8:00। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे तलत महमूद की गायी कुछ गजलें। शाम 7:00 प्रायोजित कार्यक्रम होगा जान है तो जहान है, प्रायोजक होंगे फोकस नेत्रालय बरेली। शाम 6:20 पर किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम होगा कृषि जगत, जिसमें चर्चा भेंटवार्ता लोकगीत कृषि संकेत के अंतर्गत बायो संयंत्र लगाने हेतु सरकारी प्रयास विषय पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और मौसम का पूर्वानुमान बताया जाएगा। चितपट संगीत का आनंद लेंगे आप शाम 6:10 पर। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण रहेंगे आज का सवाल कुछ खास है आज, कौशल विकास द वेलनेस जर्नी और मनोरंजन भी सुनवाया जाएगा। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। कुमकुम कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग धरती गाती कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कनक सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत। समय रहेगा दोपहर 1:15 पर। गीत आपके नाम ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:10 पर। मनभावन कार्यक्रम में दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के अंतर्गत नौशाद के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। धरोहर कार्यक्रम में दिन में 11:00 आप सुनेंगे एक नाटक टुकड़ा टुकड़ा आसमान, लेखक होंगे सुनील कुमार सक्सेना और प्रस्तुति विनोद आनंद दयाल की रहेगी। आज सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सवेरे 7:00 आज आप सुनेंगे अमृत काव्य कलश कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री विपिन कुमार शर्मा का काव्य पाठ। 102.9 मॉर्निंग हिट्स ये कार्यक्रम होगा आज सुबह 8:45 पर। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज सवेरे 9:50 पर आप सुनेंगे उस्ताद सावरे खां का राग पुरिया कल्याण में सारंगी वादन। आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम होगा आज सवेरे 10:05 पर। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। आज सुनिए प्रसंग संख्या 352।
3: एपिसोड नंबर 352।

श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि अन्य सेवकों को लेकर पुष्पक विमान उत्तर दिशा में अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी स्नानादि के पश्चात श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वे ब्रह्मचारी के रूप में अयोध्या जाकर यहाँ का समाचार सुनावें और वहाँ का कुशल क्षेम पूछकर लौटें।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: वाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका।

0: आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति, यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉ पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूट आउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य 54-29 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत काव्य कलश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए श्री विपिन कुमार शर्मा से उनका काव्य पाठ।
3: मेरा देश बदल रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, आज मेरी रचना मेरा काव्य पाठ इसी पर आधारित है। देख हमारी समृद्धि को, देख हमारी समृद्धि को, दुश्मन है हैरान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। सड़कों का बिछ रहा जाल, पुलिया पुल रोज बने हैं, सड़कों का बिछ रहा जाल, पुल पुलिया रोज बने हैं। सीमा हुई सुरक्षित, फौजी सीना तान खड़े हैं, सीमा हुई सुरक्षित फौजी सीना तान खड़े हैं। डिजिटल युग कर रहा हमारा, डिजिटल युग कर रहा हमारा गर्वित स्वाभिमान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। देख हमारी समृद्धि को, देख हमारी समृद्धि को दुश्मन है हैरान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। और क्या क्या बदलाव और हुए हैं, आसमान को छुए इमारत बदल रहा जीवन है, आसमान को छुए इमारत बदल रहा जीवन है, गांव गांव तक पहुंची बिजली अब हर घर रोशन है। उद्यम की शक्ति से देखो, उद्यम की शक्ति से देखो लिख रहा नया विधान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। देख हमारी समृद्धि को, देख हमारी समृद्धि को दुश्मन है हैरान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। नदियां आपस में जुड़कर पानी को भींच रही हैं, नदियां आपस में जुड़कर पानी को भींच रही हैं, सूखा हुआ काफूर नहर फसलों को सींच रही हैं। अन्नदाता के चेहरे पर है तनी हुई मुस्कान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। देख हमारी समृद्धि को दुश्मन है हैरान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। और क्या बदलाव आया है, जनता है बेखौफ खौफ अपराधी मना रहे हैं, जनता है बेखौफ खौफ अपराधी मान रहे हैं, किया क्राइम तो मर जाएंगे बे यह जान रहे हैं। खाकी की अब गोली करती, खाकी की अब गोली करती उनका काम तमाम, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। देख हमारी समृद्धि को, देख हमारी समृद्धि को दुश्मन है हैरान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। विकसित भारत के पूरे हो, विकसित भारत के पूरे हो रहे आज अरमान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। दुनिया देख रही है भारत, दुनिया देख रही है भारत का बढ़ता ये मान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। देख हमारी समृद्धि को, देख हमारी समृद्धि को दुश्मन है हैरान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। तो हाजिर है ये रचना, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं, ये नए दौर का नया भारत मेरा, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं, ये नए दौर का नया भारत मेरा। और बंद हाजिर करता हूँ। फैसलों पर तेरे तेरे अपने हंसे, वो समझते हैं जो कर से किरदार सा, फैसलों पर तेरे तेरे अपने हंसे, वो समझते हैं जो कर से किरदार का, बस बहुत हो चुका अब सुनेगा नहीं, बस बहुत हो चुका अब सुनेगा नहीं, ये नए दौर का नया भारत मेरा, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं। प्यार में जान अपनी लुटाते हैं वो, प्यार की राह को छोड़ सकते नहीं, प्यार में जान अपनी लुटाते हो वो, प्यार की राह को छोड़ सकते नहीं। दोस्ती जिनसे थी वह रहेगी सदा, तेरे कहने से हम तोड़ सकते नहीं, तेरे मन के मुताबिक चलेगा नहीं, तेरे मन के मुताबिक चलेगा नहीं, ये नए दौर का नया भारत मेरा, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं। और स्थितियां क्या हैं कि जिस तरह पार सीमा के तू कर रहा, दाल भारत में वैसे गलेगी नहीं, जिस तरह पार सीमा के तू कर रहा, दाल भारत में वैसे गलेगी नहीं, तेरी नीति नियत सब समझते हैं हम, इसलिए यहाँ तेरी चलेगी नहीं, तेरी बंदिश से डर कर झुकेगा नहीं, तेरी बंदिश से डर कर झुकेगा नहीं, ये नए दौर का नया भारत मेरा, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं, ये नए दौर का नया भारत मेरा, अपनी चलती डगर से रुकेगा नहीं। एक नज्म हाजिर कर रहा हूँ, जो बदलाव आया है, डिजिटल जो मोहब्बत चल रही है, हम उस भारत के रहने वाले लोग हैं जहां कान्हा को खुद वृंदावन में रास रचानी हुई थी और एक संसार को प्रेम का संदेश दिया था। तो जहां ऐसी लीलाएं खुद भगवान ने आकर की हों, वहां डिजिटल का ये दौर, जो इंस्टा और फेसबुक की ये मोहब्बत, उसको मैंने नज़्में डालने की कोशिश की है, हाजिर है।

सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा, सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा, साथ पूरा निभाने का वादा करो। सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा, सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा, साथ पूरा निभाने का वादा करो। नेट पर कब तलक यूं ही चैटिंग करें, नेट पर कब तलक यूं ही चैटिंग करें, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा, और बंदा हाजिर है। भेज कर ऑडियो और इमोजी कभी, दूरियां कब तलक यूं बढ़ाओगे तुम। भेज कर ऑडियो और इमोजी कभी, दूरियां कब तलक यूं बढ़ाओगे तुम। वीडियो कॉल से दिल नहीं भर रहा, वीडियो कॉल से दिल नहीं भर रहा, अब गले से लगाने का वादा करो। वीडियो कॉल से दिल नहीं भर रहा, और सिर्फ दिल को डीपी तुम्हारी लुभाने लगी, धड़कनों में ये हलचल मचाने लगी। दिल को डीपी तुम्हारी लुभाने लगी, धड़कनों में ये हलचल मचाने लगी। यूं मोबाइल पे कब तक निहारेंगे हम, यूं मोबाइल पे कब तक निहारेंगे हम, रूबरू मुस्कुराने का वादा करो। यूं मोबाइल पे कब तक निहारेंगे हम। और अगला बंद है। सिर्फ लाइक्स के चक्कर में रोते रहे, फेसबुक और इंस्टा पे खोते रहे, सिर्फ लाइक्स के चक्कर में रोते रहे, फेसबुक और इंस्टा पे खोते रहे, दौर ये रील का अब बहुत हो चुका, दौर ये रील का अब बहुत हो चुका, कुछ तो रियल बनाने का वादा करो। दौर ये रील का अब बहुत हो चुका, और तुम तो स्क्रीन पर मुस्कुराते रहे, आग सीने में मेरे लगाते रहे, तुम तो स्क्रीन पर मुस्कुराते रहे, आग सीने में मेरे लगाते रहे। नेट के खेल से सांस बेचैन है, नेट के खेल से सांस बेचैन है, धड़कनों में समाने का वादा करो। नेट के खेल से। अगला बंद हाजिर है। दौरे मैसेज भी अब तो रुलाने लगा, अनगिनत ख्वाब यूं ही सजाने लगा, दौरे मैसेज भी अब तो रुलाने लगा, अनगिनत ख्वाब यूं ही सजाने लगा। छोड़कर वर्चुअल जिंदगी पास आ, छोड़कर वर्चुअल जिंदगी पास आ, प्यार अपना जताने का वादा करो। फिल्टरों की चमक में न खोए रहो, हुस्न की इस नुमाइश से आगे बढ़ो। फिल्टरों की चमक में न खोए रहो, हुस्न की इस नुमाइश से आगे बढ़ो। खोल दो जुल्फे अब पास आके मेरे, खोल दो जुल्फे अब पास आके मेरे, और घटा बन के छाने का वादा करो। अगला बंद हाजिर है। रात में ख्वाब में रोज आते हो तुम, और दिले हसरतों को बढ़ाते हो तुम। रात में ख्वाब में रोज आते हो तुम, और दिले हसरतों को बढ़ाते हो तुम। थाम कर अब हमें उम्र भर के लिए, थाम कर अब हमें उम्र भर के लिए, एक नया घर बसाने का वादा करो। थाम कर अब हमें उम्र भर के लिए, एक नया घर बसाने का वादा करो। और इसका आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूं। यूं ही कट जाएगा जिंदगी का सफर, तुम बनोगे विपिन के अगर हम सफर। यूं ही कट जाएगा जिंदगी का सफर, तुम बनोगे अगर विपिन के हम सफर। फालो रिक्वेस्ट को सहमति दे भी दो, फालो रिक्वेस्ट को सहमति दे भी दो, मुझको अपना बनाने का वादा करो। सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा, सिर्फ डिजिटल मोहब्बत से क्या फायदा। एक गीत और शुरू करता हूं। हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं, हम ऋषि दधीचि की परंपरा के पालनहारे हैं। हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं। और बंद हाजिर करता हूं। हम ऋषि कश्यप के सूर्य पुत्र अत्रि सुत सोम सरीखे हैं,

0: मरियम में, हम सीता में, हम रामायण में, महाभारत और हम ही बसे हैं गीता में। ढाई मासे कर्तव्यनिष्ठ हम ही हैं लक्ष्मी बाई में, हुंकार है वीर शिवाजी की हम राणा की तरुणाई में। हम टेरेसा की सेवा में, हम मरियम में, हम सीता में, हम रामायण में, महाभारत और हम ही बसे हैं गीता में। हम बनकर सूरज रात अंधेरी हरने वाले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं। हम भगत सिंह के तेवर में, नेताजी की तरुणाई में, हम भगत सिंह के तेवर में, नेताजी की तरुणाई में, अब्दुल हमीद की तल्खी में, बिस्मिल्ला की शहनाई में। हम भगत सिंह के तेवर में, नेताजी की तरुणाई में, अब्दुल हमीद की तल्खी में, बिस्मिल्ला की शहनाई में। हम गीता के श्लोकों में, हम मानस की चौपाई में, हम दोहावली में, छंदों में, हम गजलों में, रुबाई में। हम ब्रह्मगुप्त बन सूर्य जहाँ को देने वाले हैं, हम ब्रह्मगुप्त बन सूर्य जहाँ को देने वाले हैं। हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं। हम दिवाली के दीपक हैं, हम रंग बिरंगी होली हैं। हम दिवाली के दीपक हैं, हम रंग बिरंगी होली हैं। हम ही भाषा के जनक बने, हम बहुआयामी बोली हैं। हम नदियों की कलकल में हैं, हम पर्वत की ऊंचाई में, हम दसों दिशाओं के पूजक, हम सागर की गहराई में। हम नदियों की कलकल में हैं, हम पर्वत की ऊंचाई में, हम दसों दिशाओं के पूजक, हम सागर की गहराई में। हम शांत चित्त हैं मगर सुनामी लाने वाले हैं, हम शांत चित्त हैं मगर सुनामी लाने वाले हैं। हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं, हम हिंदी वाले हैं, हम बड़े निराले हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री विपिन कुमार शर्मा से उनका काव्य पाठ। इसके साथ ही अमृत काव्य कलश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
3: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
4: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
3: जल है तो कल है,
4: यही चिंतन पल पल है।
5: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता
1: डायल 112।
0: चिंता से पाए छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुनना ना भूलिए, बहुत कुछ खास है आज इस कार्यक्रम में आपके लिए। आज सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। सवेरे 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। सुबह 9:30 पर आप समाप्त फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर करेंगे। आज सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, सुनहरा दौर। एक कार्यक्रम होगा आज सवेरे 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे

ये 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। दिन में 11 बजे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटक टुकड़ा टुकड़ा आसमान। लेखक होंगे सुनील कुमार सक्सेना और प्रस्तुति विनोद आनंद दयाल की होगी। दिन में 11:30 पर मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के अंतर्गत नौशाद द्वारा संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। आज दोपहर 1:15 पर धरती गाती कार्यक्रम में आप सुनेंगे कनक सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
1: सवेरे के 7:19 होने को है। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।
2: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाए, प्रदूषण के कारण बन जाए, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
6: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
4: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
6: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
7: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
4: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को PhD अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
8: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
4: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
9: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में ये अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
4: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। आज है 8 जुलाई और लगभग श्रोताओं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार 15 जून तक उत्तर भारत मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया और इंतज़ार करते करते आंखें पथरा गईं। बीच बीच में हाँ झलक दी मानसून ने, बादल गरजे बरसे भी, लेकिन विगत कई दिनों से जो धूप निकल रही है उससे उमस बहुत हो गई है। हाँ, अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है उत्तर भारत में सक्रिय रहने की मानसून की अब जो है संभावना जताई है और ये भी जताया कि हफ्ते भर पूरी भारी बारिश हो सकती है। और इस समय जब हम आपसे मुखातिब हैं तो इस समय रामपुर शहर के आसपास चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में बरेली, मुरादाबाद, अमरोहा या उधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बारिश हो रही होगी ऐसा अनुमान है और आने वाले कुछ समय में बारिश रामपुर शहर में भी शुरू हो जाएगी। तो ये बारिश का सिलसिला वाकई में इस बार, इस वर्ष जो है काफ़ी उठा पटक वाला रहा है, उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा मानसून। और कहीं कहीं तो ऐसा है श्रोताओं की हालत ख़राब कर दी है मानसून ने। अभी देखिए ना, परसों जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में बादल फट गया, वहाँ जो है काफ़ी क्षति हुई है। और कल ही दिन में करीब 11:15 पर वायनाड केरल में भूस्खलन हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उधर पुणे, मुंबई, लगभग महाराष्ट्र का आधा हिस्सा और मध्य प्रदेश, इंदौर और देवास और जो भी साउथ दक्षिणी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं इस समय मानसून की जो है बारिश से भरपूर हैं और वहाँ खतरा उत्पन्न हो गया है प्राकृतिक आपदाओं का। तो ये जो कहीं बारिश कहीं सूखे जैसे हालात हैं, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। और इस वर्ष जो सुपर अलनीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ रहा है ये वाकई में दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम और आप सब परिचित ही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, और आप जो हमारे रामपुर के आसपास के श्रोता हैं, वो जो यहाँ से नैनीताल है वो काफ़ी कम दूरी पर है, लगभग 112 किलोमीटर है, और अधिकतर रामपुर के आसपास के लोग जो है नैनीताल आते जाते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि नैनीताल में अक्सर हर रोज़ ही बारिश हुई है अब तक और हो रही है, लेकिन बस उससे कुछ ही दूर 40-45 किलोमीटर दूर अगर हम बात करें कालाढूंगी या हल्द्वानी या उधम सिंह नगर, तो वहाँ पर बारिश इतनी नहीं हुई। तो क्या कारण है? क्योंकि आप जितने पहाड़ी क्षेत्रों पर जाएंगे वहाँ पेड़ पौधों की कमी नहीं है, हरियाली है, और पेड़ पौधों का जो वातावरण है, जो हरियाली है, वो मानसून या बादल बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए वृक्षारोपण ज़रूरी है, तभी हम और आप समय पर इस खुशनुमा बारिश का आनंद ले पाएंगे और गुनगुना पाएंगे।

जी हाँ, पर्यावरण जब साफ होगा और वातावरण हरा भरा होगा तो समय पर मानसून भी आएगा, और कितना अच्छा दृश्य हो जाता है, सुहावना मौसम हो जाता है बारिश होने के बाद, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी मिलता है और जो भी गंदगी पत्तों पर लगी होती है वो धुल जाती है और चारों ओर खुशनुमा माहौल बन जाता है, हरे भरे पेड़ पौधे हो जाते हैं और प्रदूषण जो है वो लगभग समाप्त सा हो जाता है। लेकिन वही कुछ दिन बाद फिर वही हमारी विलासितापूर्ण जीवन इस प्रदूषण को बढ़ावा दे देता है। और ये तो अब एक चिकित्सक भी चिंता में हो गए हैं, स्वास्थ्य विभाग चिंता में है और हम और आप चिंता से युक्त हो गए हैं। चिंता पीछा नहीं छोड़ रही है क्योंकि अब प्रदूषण जो है वो शरीर के अंदरूनी अंगों को तो इफेक्ट डाल ही रहा है, साथ ही साथ बालों पर भी हमला कर रहा है प्रदूषण। बालों की जड़ों में सूजन आ रही है और वो अंदर से कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हवा में मौजूद बेहद बारीक और खतरनाक कण PM2.5 न सिर्फ हमारी सांसों को जहर बना रहे हैं बल्कि हमारे सिर की त्वचा, स्कैल्प और बालों को भी बुरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक चिकित्सा अध्ययन में ये सामने आया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से एलोपेसिया एरेटा नाम की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें सिर के बाल अचानक से गुच्छे के रूप में झड़ने लगते हैं और सिर पर गंजेपन के गोल चकत्ते बन जाते हैं। बेंगलुरु के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि PM2.5 कोई आम धूल नहीं है, इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। छोटा आकार होने के कारण ये नाक के बालों और ऊपरी श्वसन तंत्र की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को आसानी से चकमा देकर फेफड़ों की गहराई तक उतर जाता है। ये इतना महीन होता है कि फेफड़ों से होते हुए सीधे हमारे खून के बहाव में मिल जाता है और खून के जरिए ये शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और अंदरूनी सूजन पैदा करता है जो बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है। PM2.5 के लगातार संपर्क में रहने से स्कैल्प की त्वचा अस्वस्थ हो जाती है। जब ये जहरीले कण बालों के रोमों में जमा होते हैं तो वह प्रोटीन ब्लॉक होने लगता है जिससे बाल पतले होने लगते हैं और इनकी चमक गायब हो जाती है और अंततः वो तेजी से टूटने लगते हैं। इसके अलावा PM2.5 के बारीक कण स्कैल्प के प्राकृतिक तेल को सोख लेते हैं जिससे सिर में लगातार सूखापन, खुजली और डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगती है। ये प्रदूषक बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर सूजन पैदा करते हैं और जिससे नए बालों का गुना धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब बचाव के आसान तरीके हैं, प्रतिदिन AQI की जाँच करें, बाहर जाते समय N95 मास्क पहनें, एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर डाइट लें, स्कैल्प और बालों की सफाई रखें और इंडोर एयर प्यूरीफायर का प्रयोग करें। भारत में तो प्रदूषण की डरावनी तस्वीर है क्योंकि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 44% शहरों में साल के 12 महीने वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या बनी रहती है। इसलिए प्रदूषण को अगर समाप्त करना है तो हमें आपको स्वयं कदम उठाने जरूरी हैं। ये तो रही प्रदूषण की बात। दूसरा एक और भी चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव डालती है, वो है लगातार मोबाइल को देखते रहना। आजकल ज़्यादातर लोगों को एक ही शिकायत कि मैं बस 5 मिनट स्क्रॉल करने लगा था, घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। काम शुरू करना मुश्किल लगता है, ध्यान नहीं टिकता और छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। इसका कारण है डोपामाइन नामक ब्रेन केमिकल जो तुरंत मिलने वाली खुशी का आदि बना देता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इस संबंध में एक अध्ययन किया है। इसके मुताबिक जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या हर नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो दिमाग को डोपामाइन का छोटा सा शॉक मिलता है, झटका मिलता है। बार बार ऐसा होने से दिमाग इस अति सक्रियता का आदि हो जाता है। धीरे धीरे साधारण काम भी उबाऊ लगने लगते हैं क्योंकि उनसे हमें स्मार्टफोन स्क्रॉलिंग जैसी संतुष्टि नहीं मिलती। अच्छी खबर यह है कि दिमाग में प्लास्टिसिटी होती है, यानी इसे फिर से सुधारा जा सकता है। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति काफ़ी नहीं है बल्कि सही रणनीतियों की ज़रूरत है। गौर करें कि आपका ध्यान कब भटकता है। डोपामाइन और नींद का गहरा रिश्ता है श्रोताओं। एक रात की खराब नींद अगले दिन निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर कर देती है और फ़ोन की तरफ धकेलती है। इस परेशानी से जूझ रहा व्यक्ति विशेषज्ञों की मदद या व्यवहार को ट्रैक करने वाले ऐप के जरिए अपने विचारों के चक्र को बदल सकता है। स्क्रीन टाइम कम करने के बजाय अपने दिमाग को धीरे धीरे कम सक्रिय वाली चीज़ों में खुशी ढूंढने का प्रयास करें।
बदलाव कर सकते हैं। पहले ये पता लगाएं कि आपका ध्यान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से भटकता है। CBT थेरेपी जो है हमारी नकारात्मक सोच को बदलने में मददगार साबित हो सकती है, और अपनी नींद, काम और मन की स्थिति पर खास ध्यान दें। इंटरनेट और सोशल मीडिया से महज 2 सप्ताह का ब्रेक आपकी एकाग्रता में इतना सुधार कर सकता है जो 10 साल की उम्र घटाने के बराबर है। PNX नेक्सस और हार्वर्ड से जुड़े अध्ययनों में पाया गया है कि जिन लोगों ने 14 दिनों के लिए स्मार्टफोन इंटरनेट बंद किया, उनमें चिंता, अवसाद और नींद की समस्याओं में भारी कमी आई। स्मार्टफोन हमारे दिमाग को निष्क्रिय बना देता है और हर नोटिफिकेशन से निकलने वाला डोपामाइन हमें लगातार तनाव में रखता है। इसलिए आप मोबाइल यूज़ कीजिए, अपने ज़रूरत के काम भी कीजिए, लेकिन उसमें समय ज़रूरत के अलावा कम दीजिए। क्योंकि ज़रूरत है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ हाँ मोबाइल का प्रयोग, क्योंकि अब PNT तो रहे नहीं, अधिकतर मोबाइल ही हर एक के पास हैं, तो मोबाइल का प्रयोग अपने खास से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उनका हाल चाल जानने के लिए कीजिए। और जब कभी आप खाली हों, आपका दिल तना महसूस करे, तो आप उनको फ़ोन कीजिए और उनका हाल चाल जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, समय समय पर जो अधिकतर मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यूज़ बंद करिए, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा।

0: श्रोताओं, देखिए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे अखिलेश सक्सेना के साथ। समय कितनी जल्दी जल्दी बीतता जाता है, आपसे बातें करते करते आपको जानकारी देते देते समय पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। और इससे पहले कि सवेरे के 8 बजे कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दें और बता दें इतिहास के पन्नों में आज के दिन क्या क्या हुआ। 8 जुलाई 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और 1498 में आज ही के दिन वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी। 1858 में आज ही के दिन ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी। और 1954 में 8 जुलाई को सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नागल पनबिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। 2005 में 8 जुलाई को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ग्रुप 8 के देशों में सहमति बनी थी। भारत के प्रसिद्ध पर्वतारोही अनीता कुंडू का जन्म 8 जुलाई 1991 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद का जन्म 8 जुलाई 1980 को हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को हुआ। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को हुआ। और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर का जन्म 1937 में आज के दिन हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे बनारसी दास का जन्म 1912 में आज ही के दिन हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 से सम्मानित बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे का जन्म 1909 में आज ही के दिन हुआ था। और कुछ शख्सियत इस दुनिया से भी विदा हुए आज ही के दिन, जिसमें भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह का निधन 8 जुलाई 2007 में हुआ। और भारत के बंगला कवि और साहित्यकारों में से एक सुभाष मुखोपाध्याय का निधन 8 जुलाई 2003 को हुआ था। और श्रोताओं, अब बताते हैं कुछ रामपुर के आसपास की खबरों के बारे में। आपको बता दें कि जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपुर ने बताया कि 9 जुलाई को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह होना है। उन्होंने कहा है कि लाभार्थी आधार में फिंगरप्रिंट और फेस अपडेट अवश्य करा लें। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो है निशुल्क ओ लेवल कोर्स में एडमिशन मिलेगा। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो, वो निशुल्क ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जो उर्वरक विक्रेता अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके, वो अपने संबंधित राज्य के बीज भंडार में संपर्क कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 7839882763 और 9458846182 पर संपर्क कर सकते हैं। और श्रोताओं, आज का मौसम बड़ा खुशनुमा है, हसीन है, बादल हैं चारों ओर, ठंडी हवा चल रही है। इसको देखते हुए आज के मौसम के अंतर्गत रामपुर ज़िले का तापमान अधिकतम 34 डिग्री रहने का अनुमान है और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 25,000 किसानों की बनेगी फैमिली आईडी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि पीएम सम्मान निधि के लाभार्थी जिन किसानों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, वो शीघ्र अपनी फैमिली आईडी बनवा लें। फैमिली आईडी के लिए परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। जनपद में ऐसे लगभग 25,000 किसान हैं जिनके लिए फैमिली आईडी बनवाना आवश्यक है। इसके अलावा श्रोताओं, एक काम की जो खबर है वो उन युवा साथियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिन्होंने एप्लीकेशन भरी है अल्टीग्रेट संगीत की अध्यापक के लिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 जुलाई को प्रयागराज में 3 से 6 बजे की पाली में प्रस्तावित अल्टीग्रेट संगीत विषय की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर के माध्यम से प्रवेश पत्र तथा अनुदेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो, आईडी प्रूफ की मूल और छायाप्रति लेकर उपस्थित होना है। ध्यान रखें, और इसके अलावा आपको एक चीज और बताएं कि श्रोताओं, डाक विभाग अब देश के पते ठिकाने की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। आने वाले समय में मकान नंबर, गली, मोहल्ले या किसी बड़े लैंडमार्क के सारे पता नहीं खोजना होगा। हर घर और इमारत का अपना अलग डिजिटल एड्रेस कोड DGPIN होगा। ये कोड हर घर के लिए एक डिजिटल पहचान की तरह काम करेगा, जिससे डाकिया सीधे आपके दरवाजे तक पहुंच सकेगा। ये तकनीक विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों के लिए वरदान साबित होगी, जहां आज भी पतों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। डाक विभाग द्वारा IIT हैदराबाद और इसरो के साथ मिलकर तैयार की गई योजना का ट्रायल शुरू हो चुका है। घरों का नंबर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम द्वारा तय किया जाता है। समय के साथ घरों की नंबरिंग गड़बड़ हो चुकी है। अब तक घरों तक डाक पहुंचाने के लिए लैंडमार्क का सहारा लिया जाता है। अब हर घर और इमारत को 10 अक्षरों का डिजिटल एड्रेस कोड DGPIN दिया जाएगा। डाक विभाग का पुराना पिन कोड एक बहुत बड़े इलाके को दर्शाता था, लेकिन DGPIN पूरे देश को लगभग 4x4 मीटर के छोटे छोटे चौकोर हिस्सों में बांटता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड अक्षांश और देशांतर पर आधारित है। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर या कोई भी पर्सनल डाटा स्टोर नहीं होता, जिससे प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। इसलिए अगर आपके शहर, सड़क या मकान का नंबर बदल भी जाए, तब भी आपका DGPIN कभी नहीं बदलेगा। प्रवर अधीक्षक ने बताया है लखनऊ के कि पिछले वर्ष तक DGPIN का काम पूरा हो पाया था। DGPIN पत्र पर पते के साथ लिखे जाएंगे। डाकिया ऐप के जरिए DGPIN से पते की जानकारी करके आपके घर पहुंचेगा। और श्रोताओं, आज भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप की जो है वो पुण्यतिथि है। जी हाँ, भारतीय सिनेमा का मशहूर हास्य अभिनेता, जिन्होंने अपने हास्य अभिनय से दर्शकों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म अफसाना से की थी। जगदीप का पूरा नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। जगदीप ने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें लोग उनके वास्तविक नाम से न जानकर जगदीप नाम से जानते हैं। वो साल 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से काफ़ी चर्चा बटोरने में कामयाब रहे थे।
1: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना?
2: अरे कोशिश, ऐसी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते के धरवा और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
3: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
2: हाँ हाँ,
3: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
2: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
4: फिर क्या हुआ?
2: अरे फिर होना क्या था, मैं तो इश्तिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई है तो जरा सुधाई कर दी। जटा दट बहुत मारा, बहुत मारा।
4: फिर क्या हुआ?
2: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
4: क्या कहा?
2: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ, काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो।
0: श्रोताओं, ये था वो डायलॉग जिससे जगदीप सूरमा भोपाली के नाम से बहुत फेमस हुए थे। इनका जन्म 19 मार्च 1939 को दतिया, मध्य प्रदेश में हुआ था। अपने हाव-भाव से दर्शकों को हंसाने वाले जगदीप ने उस दौर में काम किया जब फिल्म उद्योग में महमूद, जानी वॉकर, घूमल, कैस्ट्रो मुखर्जी जैसे हास्य कलाकार मौजूद थे। 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया जगदीप ने। और माँ की शिक्षा जगदीप को भाई, उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, मेरी माँ ने मुझे समझाया था, इसलिए मैं माँ के आदर्श को फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। एक हास्य अभिनेता के रूप में जगदीप का निधन 8 जुलाई 2020 को हो गया। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया फिल्म पुनर्मिलन का ये गीत।

श्रोताओं, समय के अनुसार, क्योंकि अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि आपसे और बातें की जाएं, और जानकारी दी जाए और मनोरंजन करवाया जाए, आपको कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने के अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवाद समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने ही लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड

0: संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taskforce, FATF. Recognizing the links between

0: to strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निमटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमेरिका ने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निमटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाए जाने से निमटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़्वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज्जम जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू कवानीन और बैन अलाक़्वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निमटने के लिए एक मुफाहमत नामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
3: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
1: भारत के तरक्याती सफर और विकसित भारत 2047 के तस्वीर नीज गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के दरमियान हम आहंगी को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में मजीद गहरी शराकत दारी के लिए कहा।
3: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिया में शिरकत की। खसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखाह तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
3: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ 3री सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहाँ वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम के दफ्तर PMO ने मुख्तलिफ शोबों पर एलनिनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में ये मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखिर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदाम किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। ادھر بھارتی موسمیات محکمے کے افسروں نے جون اور جولائی میں بارش کی مجموعی صورتحال کا خاکہ پیش کیا. پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے نے بتایا کہ وہ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اور فی الحال صورتحال مستحکم ہے. دلی سے پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
1: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کولکاتہ اور اس کے اطراف پانچ ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی ہے. یہ کارروائی آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بعض بینک کھاتوں کے ذریعے مشتبہ رقوم کی منتقلی، غیر قانونی طریقے سے رقم اکٹھا کرنے اور مبینہ غیر قانونی مالی لین دین کے سلسلے میں کی گئی ہے. تلاشی کی یہ کارروائی ایویشن کے شعبے میں کام کرنے والی پرائیویٹ فرم کیئر ویل گروپ اور اس کے ڈائریکٹرز اور ایک مبینہ الیکٹورل ٹرسٹ سے وابستہ ٹھکانوں پر کی گئی. ای ڈی کی ابتدائی چھان بین کے مطابق 150 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم مشکوک مقاصد کے لیے ایویشن اور ٹریول کمپنیوں کے توسط سے منتقل کی گئی. ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ اپریل 2023 اور اس سال جون کے درمیان ترنمول کانگریس کے کھاتوں سے تقریباً 160 کروڑ روپے پرائیویٹ ایویشن فرم اور اس سے وابستہ ادارے کو منتقل کیے گئے. امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں. یہ حملے آبنائے ہرمز میں تین تجارتی جہازوں پر حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد کیے گئے ہیں. امریکہ کی مرکزی کمان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے یہ حملے ایک بین الاقوامی گزرگاہ میں کمرشل جہازوں پر حملے کرنے کے کا سخت بدلہ لینے کے لیے کیے ہیں جن میں بے قصور شہری سوار تھے. ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی قشم اور بندرگاہ اور بندر عباس میں ان دھماکوں کی اطلاع دی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یہ تازہ حملے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. امریکہ نے ایک لائسنس کو بھی منسوخ کر دیا ہے جس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے سے متعلق ایک عبوری سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کے تیل کی فروخت کی اجازت دی گئی تھی. امریکہ کے افسر نے بتایا کہ یہ لائسنس اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ضرورت ہے کہ ایران اس کا نتیجہ بھگتے. فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ ونکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے. اضافی وقت کے بعد بھی دونوں ٹیمیں کوئی گول نہیں کر سکی تھیں. ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا نے مصر کو 2-3 سے ہرا دیا. ارجنٹینا 78 منٹ تک 2 سے پیچھے چل رہا تھا. موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کی طرف سے کرسٹیانو رومارو نے 79 منٹ میں پہلا گول کیا. اس کے بعد 83 منٹ میں میسی نے گول کر کے اسکور 2-2 سے برابر کر دیا اور اینزو فرنانڈیز نے اضافی وقت میں فیصلہ کن گول کر کے ارجنٹینا کی جیت کی راہ ہموار کر دی. مردوں کی کرکٹ میں نوٹنگم میں ٹرینٹ برج کے مقام پر کل رات تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 125 رن سے ہرا دیا. اس طرح انگلینڈ نے 5 کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے. انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 202 رن کا نشان رکھا تھا لیکن بھارت کی پوری ٹیم 11 اوورز اور 4 گیندوں میں صرف 76 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
2: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے بھارت انڈونیشیا میں شراکت داری کے سنہرے باب کا آغاز. وزیر اعظم مودی کو انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازے جانے کی خبر کو بھی اخبارات نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے. ماحولیاتی تحفظ کے بغیر ترقی سراسر بے معنی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو انقلاب اور دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے کیرالم کے وائناڈ میں بڑے پیمانے پر چٹان کھسکنے کے واقعے میں کم از کم 3 افراد کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی چند بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں. دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان. امریکہ کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان.
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں. جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی ساجداری پر زور دیا ہے. وزیراعظم کے دفتر نے النینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
5: میڈیم ویو 336.7 میٹر ارتھات 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے۔ صبح کے 8:45 ہو چکے ہیں۔ اب پرستوت ہے کارکرم 102.9 مارننگ ہٹس۔

अभी आपने मधुवंती बागची और सचिन टंडन को सुना फिल्म हाउसफुल 5 में, और लीजिए अब सुनिए अमित मिश्रा की आवाज़ में फिल्म सिकंदर का गीत।

अभी आपने सुना अमित मिश्रा, अकाशा और सिद्धांत मिश्रा की आवाज़ों में फिल्म सिकंदर का गीत। और लीजिए अब सुनिए आनंद राज आनंद और काव्य कीर्ति की आवाज़ों में फिल्म वेलकम टू द जंगल का गीत।

0: अभी आपने सुना सचेत टंडन और साज भट्ट की आवाज़ों में फिल्म वार टू का गीत, और लीजिए अब सुनिए सिमरन चौधरी की आवाज़ में फिल्म धुरंधर का गीत।
1: सुर में गाना सीखिए।

अभी आपने सुना मीत ब्रदर्स दीप मोनी और नेहा भसीन की आवाज़ों में फिल्म रेस 3 का गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए सिद्धार्थ वसरूर और नंदिनी देव की आवाज़ों में फिल्म मुन्ना माइकल का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह बोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
2: ये जो हमें भारत सरकार की वजह से पैसे मिले हैं PFO की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
1: जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषक सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन उत्पादन विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा,
3: पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कम्पोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों

0: में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा,
1: इस साल सुपर एलिनो के प्रभाव के वजह से वर्षा की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नहरों के साधन नहीं है, वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5 लाख मिलीकृत विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क बीज विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25% से लेकर 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमट पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्दी भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
2: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
3: मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्रीदेवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4 से 5 हजार व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरावली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगाओं के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर

0: बताया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

0: ये प्रेरक प्रसंग गोपाल कृष्ण गोखले जी के जीवन से। भारतीय जनजीवन में स्वाधीनता का मंत्र फूंकने वाली अग्रणी विभूतियों में एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जैसे स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वस्तुतः गोखले जी ने ही उन्हें स्वाधीनता संग्राम में उतरने का मंत्र दिया था। वो बड़े स्वाध्यायी पुरुष थे। अंग्रेजी में तो उनकी विद्वता अद्भुत थी। तत्कालीन भारतीय कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर ने तो उनके बारे में एक बार यहां तक कहा था कि गोखले ने यदि कोई अंग्रेजी पुस्तक नहीं पढ़ी तो वो पढ़ने योग्य होगी ही नहीं। ऐसी थी गोखले जी की विद्वता की धाक। उन्होंने देश की सेवा के लिए एक संस्था बना रखी थी, भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मुंबई म्युनिसिपैलिटी के एक इंजीनियर थे जो इस देश में आकर देश सेवा की इच्छा रखते थे। संकोच के नाते उन्होंने गोखले जी को स्वयं पत्र न लिखकर डॉक्टर देव से एक पत्र लिखवाकर अपना मंतव्य जाहिर किया। उन्हें शंका थी कदाचित गोखले जी उन्हें अपनी सोसाइटी में भर्ती करेंगे या नहीं। इसी नाते उन्होंने डॉक्टर देव से यह भी कहा कि पहले मैं सोसाइटी को प्रार्थना पत्र दूंगा, यदि वो मंजूर हो गया तो म्युनिसिपैलिटी की नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, न मंजूर होने की हालत में नई नौकरी कहाँ ढूंढता फिरूंगा। परंतु गोखले जी बड़े पारखी थे, वो ठोक बजाकर किसी को भी संस्था में भर्ती करते थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर देव से इंजीनियर महाशय को यह कहलवाया कि वो पहले नौकरी से इस्तीफा दे दें, फिर उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। उनकी दृष्टि में इस कदम से इंजीनियर की देश सेवा की भावना की परीक्षा होनी थी। परंतु इंजीनियर भी था कट्टर देशभक्त। जब उसे गोखले जी का संदेश मिला तो उसने फौरन नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, तनिक भी विलंब नहीं किया। फिर उसके प्रार्थना पत्र पर विचार करके गोखले जी ने उसे अपनी सोसाइटी में सदस्यता दे दी। ये उस इंजीनियर के जवानी के दिनों की घटना है जिसे आगे चलकर सारा हिंदुस्तान ठक्कर बापा के नाम से जानता था। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बचपन का ही प्रसंग है कि एक बड़े से लड़के ने गोपाल का बायां हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया और नन्हे गोपाल के चेहरे पर आंखें गढ़ाते हुए बोला, क्या तुझे अंग्रेजों से डर नहीं लगता? नन्हे गोपाल ने उस बड़े लड़के की आंखों में अपनी आंखें डालते हुए कहा, मैं भला उनसे क्यों डरूं? तभी एक दूसरा लड़का सामने आया और गोपाल का मजाक सा बनाते हुए बोला, अरे भाई तुमने प्रश्न ही गलत पूछ लिया, तुम्हें पूछना चाहिए था गोपाल क्या अंग्रेज तुमसे डरते हैं। तब गोपाल ये कहता, हाँ बिल्कुल अंग्रेज मुझसे डरते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, गोपाल ने बड़े सहज भाव से कहा, अंग्रेज हम सभी से डरते हैं, सब देशवासियों से डरते हैं, हमारे गांव के रहने वालों से डरते हैं। तभी तो वो घोड़ों पर सवार होकर हाथों में चाबुक लेकर चलते हैं, बात बात पर हमारी गरीब जनता पर चाबुक चला देते हैं। वो हमें डराते हैं क्योंकि वो खुद हमसे डरते हैं। वाह वाह गोपाल वाह, एक लड़की ने तालियां बजाई। उसके साथ ही कई लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगे। तुम्हारे विचार तो बहुत उच्च हैं गोपाल, एक आवाज आई पीछे से। गोपाल व उसके सहपाठियों ने चौंक कर पीछे देखा। स्कूल के मुख्य अध्यापक पीछे खड़े थे, सबने उन्हें प्रणाम किया, चुप हो गए। मुख्य अध्यापक ने दाएं हाथ में पकड़े बेंच से इशारा किया, जरा इधर आओ। तो सभी बच्चे सहम गए, सबको लगा कि गोपाल की खैर नहीं। कुछ बच्चे सोचने लगे, अच्छा है ये पिटे, छोटे मुंह बड़ी बात, पिद्दा सा है नहीं और बड़ी बड़ी बातें करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम, इसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे राग पूर्या कल्याण में उस्ताद साबरे खां से सारंगी वादन, विलंबित रचना एक ताल में थी। इसके साथ ही उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: आपके अनुरोध कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने और फिल्म का नाम है दीवार। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुनील, साहिल, अंश और सुजाता पोहरकार। आदर्श नगर और मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहिब राही, मेराज जहाँ। मौला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से बिमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके परिवार के लोग। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। श्रोताओं, आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है। इनका जन्म 8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम हरनीत कौर है। मैं 8 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली नीतू सिंह 1970 और 1980 के दशक की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर इस कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दीवार से।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

एक बार फिर वही आवाज़ें, किशोर कुमार और आशा भोंसले की। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, और फिल्म का नाम है खेल खेल में। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। कनेरा मोहला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भत्ता। श्रोताओं, नीतू सिंह ने 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया नाम से अभिनय शुरू किया था और बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली भूमिका से सजी हुई फिल्म थी 1966 में आई सूरज। उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर के साथ 12 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, पति पत्नी और वो, बहुत सी फिल्में रहीं जिसमें ऋषि कपूर के साथ उन्होंने काम किया। तो खेल खेल में भी उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का आपकी पसंद पर ये गीत।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अखिलेश सक्सेना के साथ। अगला गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज़ें हैं शैलेंद्र सिंह और आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है रफू चक्कर। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम रेशमा और आदिवा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन कुमार वली और कुमारी डब्लू। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम और उल्ला आसमा। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सभा सेरे। मौला हलवायान शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और शबाना नाज। सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश तारणी, सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नहमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शेव खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की, दक्ष, छवि, रुद्र, आयुषी और खमानी सिंह। मझोली से हीरावती देवी और उनके परिवार के लोग। लदावली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी और आदित्य कसाना। मिलक भूजपुर आशा बड़ी मस्जिद के पास मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी। मीरगंज से कल्लू मिस्त्री। परिमल काजगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर फिल्म रफू चक्कर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। श्रोताओं, नीतू सिंह ने 1973 से 1983 तक मुख्य नायिका के रूप में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उसके बाद 1980 में अपनी शादी के बाद 1983 में उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ दिया था। लगभग 26 सालों के बाद वो उन्होंने वापसी की फिल्मों में, और लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में वो दिखाई दी थी। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म जानी दुश्मन का गीत, जो कि फिल्माया गया है जितेंद्र और नीतू सिंह पर। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। बोरखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मल्लिक। जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब बड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी और कार्तिक। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। बटेनर रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता, सिद्धांत और एकांश गवाड़कर। भावदरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाड़कर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शिवचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। जमनी मोला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशा, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया और हबीब अहमद इदरीसी। पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एहरोई और स्वाति मौर्य। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। जैतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर और मोहम्मद वकील राही। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत।

आकाशवाणी रामपुर की ओर से नीतू सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम समाप्त करने के अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं मेरे आज की पहली सभा के प्रसारण। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर के आज के इस कार्यक्रम में सुनिए 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

आप सुन रहे कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। और लीजिए अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है सुराग, गीत लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

और अब सुनिए आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सागर में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म नमक हलाल में, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म विजय का गीत।

फिल्म विजय के इसी गीत के साथ सुनहरा दौर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं हमारे आज की पहली सभा के प्रसारण, दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक टुकड़ा टुकड़ा आसमान। लेखक हैं सुनील कुमार सक्सेना और प्रस्तुति विनोद आनंद दयाल की है। तो आइए सुनते हैं नाटक टुकड़ा टुकड़ा आसमान।

0: अरे भाई आखिर हुआ क्या?
1: वही इस चौक वाली जमीन का झगड़ा। चौधरी साहब के आदमियों ने खान साहब के आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मार
0: दिया करे। लगता है ये झगड़ा अब ये और बढ़ेगा। चलो भाई अपनी दीवारें बंद करें, घर चले, जान जाने अब क्या होगा।
1: चलो भैया बंद करें।
0: चलो
1: चलो चलो चलो चलो।
2: शेरपुर गांव की? अच्छा अच्छा आ जाओ अंदर जल्दी।
3: ईसु तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटा।
2: आओ अम्मा अपनी गठरी यहाँ रख दो।
3: जीते रहो बेटा। अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो ना जाने मुझे कहाँ ठिकाना मिलता। पहले सोचा गांव ही वापस चली जाऊं, पर कोई इक्का तांगा होता तब ना, तब तो जाती। सबका सब डर के मारे भाग गए। हे यीशु कैसी अफरा तफरी फैली हुई है चारों तरफ, हर कोई सिर पे पांव रख के भाग रहा था। हाँ बेटा ये चौधरी और खां कौन है?
2: क्यों तुम्हें क्या करना है?
3: कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, बस यूं ही भागते भागते सब इन्हीं दोनों का जिक्र कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये झगड़ा फसाद कुछ और रंग लाएगा। खुदा गारत करे इन दोनों को, न चैन से जीते हैं ना ही दूसरों को चैन से जीने देते हैं।
2: ए बुढ़िया जरा सोच समझ के जबान निकाल।
3: मुझे माफ कर दे बेटा मुझसे भूल हो गई।
2: ठीक है अब आगे ख्याल रखना।
3: हाँ हाँ बेटा हाँ।
4: क्या हुआ यूसुफ किस पर बिगड़ रहे हो?
2: कुछ नहीं अबू, ये बुढ़िया एक तो इसे ऐसे नाजुक मौके पर घर में पनाह दी, ऊपर से आप ही के बारे में वो जरूर बकवास कर रही है।
4: अरे इस तैला आपा आप यहाँ? यूसुफ जरा अदब से बात तो नसी को समझे। बुजुर्गों किस तरह पेश आते जानते हो?
3: ये कौन? अरे अरे रहमत मियां तुम। हाँ तो ये तुम्हारा मकान है?
4: हाँ आपा।
3: चलो ठीक ही जगह पे आ गई हूँ।
4: हाँ आपा मैं ही हूँ और ये मकान आपका ही है, लेकिन आपा इस झगड़े फसाद में आप यहाँ कैसे फंस गईं?
3: क्या बताऊँ रहमत मियाँ, तुम्हें तो मालूम ही है गांव में मेरा कौन रखा है।
4: क्यों?
3: जिंदगी कट गई अकेले रहते रहते।
4: ओहो।
3: पर बुढ़ापे में अकेले मन घबराने लगा है, पता नहीं किस दिन आँख मुंद जाए। कम से कम आखिरी समय तो कोई अपना पास होना ही चाहिए।
4: आपा आप भी कैसी बातें करने लगी हैं?
2: दरवाजा खोलो यूसुफिया। अब वो भूरा और उसके आदमी
4: हैं? भूरा ठीक है उन्हें वहां बैठाओ, मैं अभी आता हूँ।
2: ठीक है अब।
4: हाँ आइए आपा हम अंदर चले, है ना? आइए आइए इधर से आइए आ जाइए। हाँ इधर हाँ यहाँ बैठिए आप। हाँ तो अब बताइए आप शहर पहुंची तो?
3: हाँ रहमत मियाँ जब मैं शहर पहुंची हर आदमी दहशत के मारे घबरा के भाग रहा था।
4: हाँ।
3: रास्ते में सुना कि किले के बीच में किसी की जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ है।
4: ऐसा है अब तो आपको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, आप हमारे साथ ही रहिए। आपका इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते?
3: अच्छा रहमत मियाँ।
4: हाँ।
3: वो लड़का वही है ना जो बाहर मुझसे?
4: हाँ पर, वही था जो आपसे जुबान लगा रहा था, बहुत बदतमीज हो गया।
3: कहाँ मियाँ उस बेचारे की क्या गलती थी, मैंने ही अनजाने में तुम्हारे लिए भला बुरा कहा। तो तुम ही बताओ एक बेटा अपने बाप की बुराई किस तरह सुन सकता है। अच्छा ये तो बताओ
4: क्या
3: उस जमीन का क्या झगड़ा है?
4: क्या बताऊ आपा, वो रास्ते में एक बड़ा चौक पड़ता है ना, वहाँ एक जमीन खाली पड़ी है।
3: अरे मैंने कहाँ देखा चौक पौक। हाँ आगे बताओ क्या है?
4: झगड़ा ये है कि हम लोग उस जमीन पर मस्जिद बनवाना चाहते हैं, मगर चौधरी ने अपने लोगों को भगा दिया है और उनसे ये कहा है कि इस जमीन पर मंदिर बनना चाहिए।
3: अरे तो इसमें झगड़े की कौन सी बात है, आपस में बैठ के मामला हल क्यों नहीं कर लेते। पर मियां ये चौधरी है कौन?
4: अब आप जरूर जानती होंगी उसे आपा। अरे आप ही के गांव का तो रहने वाला है।
3: ए, अपने गांव का?
4: हाँ।
3: ए, क्या नाम है उसका?
4: चौधरी शमशेर सिंह।
3: चौधरी शमशेर सिंह?
4: हाँ।
3: नहीं
4: क्यों, क्या बात है आपा, आप उसका नाम सुनकर चौंक क्यों पड़ी?
3: कुछ नहीं, अब बस यही हुई है।
4: नहीं आपा, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं।
3: नहीं कोई बात नहीं है अहमद मियां, एक बात कहो।
4: हाँ कहिए आपा, कहिए।
3: चौधरी से सुलह कर लो।
4: आपा ये आप कह रही हैं, उससे और सुलह? नहीं ये नामुमकिन है आपा, बिल्कुल नामुमकिन है।
2: अबू
4: हाँ,
2: सब लोग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं।
4: अच्छा यूसुफ चलो, आपा बात बाद में करेंगे, आप इतने में आराम कीजिए, मैं बस अब थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। चलो यूसुफ आओ। चलो
3: रहमत मियां, रहमत मियां। चला गया। हे यीशु, ये तूने मुझे किस उलझन में डाल दिया, अब मैं किस तरह समझाऊं? ओ गॉड, मुझे रास्ता दिखला, मुझे रास्ता दिखला, मुझे।
5: आइए आइए
6: खान साहब,
5: आइए
6: खान साहब,
5: बैठिए। आप लोग बैठ जाइए,
6: बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए।
2: सब लोग आ गए हैं आपा हुजूर, आप बताइए क्या करना है हमें।
6: हाँ खान साहब, बस आपके इशारे की देर है, फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं। उस कमीने चौधरी की यह मजाल कि हमारे आदमियों पर हमला करे, हम उससे बदला लेंगे,
5: जरूर
6: लेंगे बदला लेंगे।
5: खामोश हो जाइए, आप लोग खामोश क्यों नहीं होते?
4: आखिर आप लोग ये समझने की क्यों नहीं कोशिश करते कि चौधरी एक चाल चल रहा है, वो इस मुद्दे को महज इसलिए उछालने की कोशिश कर रहा है कि उसे अगले साल मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। चाहता वो ये है कि हम बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएं जिसका फायदा सिर्फ उसे होगा और सिर्फ उसे होगा।
7: पर हां साहब, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आज अगर हमने चौधरी को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हमारी अपनी ही कौम का यकीन हम पर से उड़ जाएगा, उस शक्ल में तो हमें और भी नुकसान होगा।
6: भूरे मियां ठीक कहते हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
5: ठीक है ठीक है, अगर आप यही चाह रहे हैं तो ठीक है, पर इस शहर की फिजा देख रहे हैं आप लोग, अगर ये झगड़ा बढ़ा तो फौरन एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेगा जिसका खमियाजा हमें और आपको उतना नहीं जितना उन अनगिनत बेकसूर लोगों को भगतना।

0: पड़ेगा जो 2 जून की रोटी जुड़ाने में भी दिन भर अपना खून पसीना एक कर देते हैं और उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से रोटी पाते हैं। आखिर उन्हें किस गुनाह की सजा मिलेगी आप लोग जानते हैं?
1: पर अब्बा, चौधरी क्यों नहीं सोचता ये सब कुछ? उसने हमारे आदमियों को मारा है, हमारी कौम हमारे मजहब की तौहीन की है, हम उसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने हमारे आदमियों को नहीं मारा अबू, बल्कि हमारी कौम को ललकारा है। ऐसे में हम मुंह छुपाए घर में पड़े नहीं रह सकते। क्या ये बुजदिली नहीं होगी?
2: और हम बुजदिल बिल्कुल नहीं है। हम उससे इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। आप सब लोग तैयार हैं?
3: तैयार
2: हैं। तो आइए मेरे साथ और फैसला हो ही जाए।
0: चलो चलो, मैं कहता हूँ रुक जाइए आप लोग। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए।
1: चलो हैरिये, मैं भी आपके साथ चलूंगा।
0: यूसुफ मियां, तुम भी नाराज बन रहे हो?
1: चलो
4: रुक जाओ बेटा, रुक जाओ।
1: तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। चलो
0: चलो भैया, कैसे रोकूं आपा? ये सैलाब अब मेरे बस के बाहर है आपा, मैं नहीं रोक सकता।
4: नहीं रहमत मियां, रोक लो ने, रोक लो, मुझे रोक लो।
0: अरे आपा, आपा, आपा, अरे अरे ये तो बेहोश हो गई। अरे कोई है? कोई है? जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। उठे मत, आप लेटी रहिए। आपा देखिए देखिए, आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए।
4: नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज अगर मैं ना बोली तो अनहोनी हो जाएगी रहमत मियाँ।
0: कैसी अनहोनी आपा, क्या कह रही हैं आप?
4: हाँ रहमत मियाँ, बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी।
0: कैसी अनहोनी हो जाएगी?
4: बस तुम इतना जान लो कि जिस आद के बाद में हाँ। तुम मुझसे आज तक पूछते रहे
0: हाँ हाँ।
4: वो चौधरी की बीवी थी।
0: क्या वो चौधरी की बीवी? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता आपा, नहीं हो सकता।
4: ये सच है, ये सच है रहमत मियां, बिल्कुल सच।
0: ओह या खुदा, ये क्या हो गया? मैं अब तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा?
2: अब आया मजा। कमीने को दुनिया की फिक्र है पर अपने घर की कोई फिक्र नहीं। इधर उधर मीटिंग करता फिरता है। अब मिला ईद का जवाब पत्थर।
0: क्या वक्त हो, क्या हुआ, क्या थे तुम्हें चौधरी के घर?
2: कुछ नहीं खास साहब, वो बदमाश घर पर मिला ही नहीं।
0: फिर
2: आज अगर वो मिल जाता तो, मगर अब भी वो सुबह तक दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा।
4: क्यों क्यों, क्या किया तुमने, क्या किया बताओ, बताओ ना।
2: अरे करना क्या था, वो घर नहीं मिला तो उसकी लौंडिया तो थी, उठा रहा है उसकी लौंडिया सुबह तक। बड़ा नाक वाला बनता था ना, कमीने की नाक कट के उसी चौके लटक जाएगी।
4: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रहमत मियां, उस लड़की को बचा लो, उस लड़की को बचा लो रहमत मियां।
0: अरे रसूले करीम, ये क्या हो गया? अगर अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो चौधरी तो सिर्फ दुनिया को ही मुंह नहीं दिखा पाएगा, पर मैं तो तुझे भी अपना मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। घबराओ मत आपा, अल्लाह सब ठीक करेगा। बूढ़ा
5: जी,
0: कहाँ है वो लड़की, बता कहाँ है वो लड़की, जल्दी बताओ।
5: वो खसाब,
0: जल्दी बताओ कहाँ है वो लड़की।
5: वो बन्ने मियाँ की पुरानी हवेली में।
0: बन्ने मियाँ की हवेली में
5: जी।
0: अच्छा आओ आपा, आओ मेरे साथ आओ, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। आओ मेरे साथ चलो, आओ।

0: ए, मुझे
1: यार कैसी खबर आ रही है, अब मजा आएगा चौधरी के बच्चे को।
0: छोड़ दे मुझे, अमीने कहती हूँ छोड़ दे मुझे।
2: छोड़ दूँ तुझे? छोड़ दूँ? छोड़ दूंगा।

0: तो तू और तेरा बाप दोनों दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे।
1: मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो, नहीं तो। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे।
0: अब तो तेरा बाप ही तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा।
1: कमीने, कुत्ते, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, बचाओ, बचाओ,
2: बचाओ। यूसुफ,
3: हसन, यहाँ
2: कहाँ है यूसुफ? कहाँ है यूसुफ? मैं पूछता हूँ जल्दी।
3: वो अंदर। यूसुफ, छोड़ दो उस लड़की को, मैं कहता हूँ छोड़ दो इस लड़की को।
0: अबू, आप यहाँ?
1: मुझे बचा लीजिए बाबा, इंदर इंदर से मुझे बचा लीजिए।
3: घबरा मत, घबरा मत बेटी, अब कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता।
4: आ, मेरी बच्ची, मेरे पास आ, मेरी बच्ची।
3: पापा, आप इस लड़की को लेकर चलिए, मैं इन सब से, आप चलिए इसको लेकर, मैं अभी आता हूँ। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब बुरा, ये लड़की यहाँ से नहीं जा सकती।
0: कौन रोकेगा?
3: तुम।
0: मैं कहता हूँ हट जाओ रास्ते से।
5: खानदार, हम आपकी इज्जत करते हैं, अच्छा है आप यहाँ से चले जाइए।
3: क्या करोगे तुम? मुझे मार डालोगे? मार डालो, पर मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा।
5: हाँ साहब, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए।
4: क्या यूसुफ बेटा, यूसुफ बेटा, तू कुछ क्यों नहीं बोलता?
0: मैं क्या बोलूं, अब्बा को यहां आना ही नहीं चाहिए था।
3: यूसुफ, ये तू नहीं, तेरे अंदर छिपा शैतान बोल रहा है। जो गुनाह तूने किया है उसके लिए तुझे खुदा भी मुआफ नहीं कर सकता। तू कहता है मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, और एक कम वक्त, अगर आज मैं ठीक वक्त पर यह नहीं आता तो तारीख तुझे कभी माफ नहीं करती। दुनिया तेरे नाम पर थूकती और कहती, ये है वो कमजोर इंसान जिसने अपनी सगी बहन।
0: अबू,
3: हाँ क्यों, तसव्वुर कर लेने से ही कांप गए।
0: अबू, क्या आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं?
3: हाँ बेटे, हाँ, मैं पूरे होश हवास में ये बता रहा हूं, कह रहा हूं कि अगर आज तुमको ये राज ना बताया गया तो इंसानियत और मोहब्बत का नाम हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से फना हो जाएगा, मिट जाएगा, और रह जाएगी सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। हाँ हाँ यूसुफ बेटे, ये लड़की तुम्हारा अपना खून, तुम्हारी सगी बहन है।
0: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अबू, अबू, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अबू,
4: नहीं मेरे बच्चे, ये सच है, ये एक असलियत है।
0: उफ, मेरे खुदाया, ये क्या हो गया?
3: ये लड़की यूसुफ की सगी बहन, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या तमाशा। आप लोग चौंकिए नहीं, ये लड़की वाकई यूसुफ की सगी बहन है, और यूसुफ, यूसुफ चौधरी शमशेर सिंह का बेटा है।
0: हाँ, चौधरी शमशेर सिंह का बेटा है।
3: यूसुफ चौधरी का बेटा? मगर ये कैसे, ये मामला क्या है?
4: सब समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे, सब समझ में आ जाएगा। आज से लगभग 20 वर्ष पहले की वो रात मुझे आज भी तरह याद है कि जैसे कल की बात हो।

0: मर गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई।
1: बस बस बस बस, थोड़ी दूर आओ। वो देखो, वो जो के सामने एक झोपड़ा दिखाई दे रहा है। बस तो लो लो लो लो, झोपड़ा करीब ही है। लो लो, आ गया, लो आ गया झोपड़ा, आ गया। हाँ हाँ,

0: है, एक मुराद के।
1: आपा, आपा, मेरी बेगम पेट से है, शहर ले गया था डॉक्टर को, रास्ते में तकलीफ हो गई। हमारा गांव अभी अभी यहाँ से 3 कोस दूर है। बेगम तकलीफ से बेजार है, वहां तक कैसे जा पाएगी आपा? क्या क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं?
0: हाँ, क्यों नहीं, ऐसे समय में इंसान ही इंसान के काम आता है। हे प्रभु यीशु, तेरी कैसी माया है, इस अभागिन के द्वार आज तक कोई नहीं आया और आज
1: आओ उतरो।
0: हाँ, ले आओ, इसे अंदर ले आओ। आओ बहन, जरा आराम से आओ, आओ आओ बहन, आओ। तुम यहीं ठहरो,
1: अच्छा
0: मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। हाँ सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम रहमत अली खान है। मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं?
0: अरे शुक्रिया शुक्रिया इससे मत छोड़ो, तुम्हारी बीबी को कुछ ही देर में बच्चा होने वाला है, तुम यहीं ठहरो।
1: अच्छा,
0: मैं सब ठीक कर लूंगा।
1: परवरदिगार रहम करना। तूने मेरी सुन ली? आपा, आपा क्या हुआ आपा, जल्दी बताओ। मैंने मैंने एक साथ एक नहीं दो दो बच्चों के रोने की आवाज सुनी है। क्या क्या अल्लाह ने मुझे एक साथ दो दो औलादे?
0: नहीं रहमत मियां, नहीं, खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था।
1: क्या, पर मैंने तो अभी दो बच्चों के रोने की आवाज, नहीं नहीं मेरे कान धोखा नहीं खा सकते आपा, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते।
0: पर ये दोनों फूल किसी और डाली के हैं, तुम्हारी बीबी को इस बार भी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हो सकता। ऐ खुदा, ये मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा आपा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपा, आप मेरा घर बर्बाद होने से बचा सकती हैं आपा।
0: मैं?
1: हाँ।
0: कैसे?
1: देखिए देखिए, मेरा बच्चा तो चला ही गया, पर आप मेरी बीवी की जान बचा सकती हैं। सिर्फ आप बचा सकती हैं आपा, सिर्फ आप बचा सकती हैं।
0: मैं समझी नहीं। हाँ। भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ?
1: ऐसा है, इस समय आप सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ आप। अगर आप दूसरी औरत का एक बच्चा मेरी बीवी की गोद में है।
0: क्या बक रहे हो तुम, ये गुनाह है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। किसी दूसरी का बच्चा, नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट इस गुनाह के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
1: पर अगर मेरी बेगम ने इस सदमे की वजह से दम तोड़ दिया तो क्या अब पर एक इंसानी जान न बचाने का गुनाह आयत नहीं होगा? आप मेरी बात मान लीजिए, आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आपा, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
0: नहीं नहीं, नहीं ये गुनाह होगा, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। पर अगर इसकी बीवी इस सदमे में मर गई तो इस पाप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी। मैं एक इंसानी जिंदगी को एक छोटा सा गुनाह करके बचा सकती हूँ। हाँ, इंसानी जिंदगी को बचाना उसकी सबसे बड़ी पूजा है, इबादत है। मुझे छोटा सा गुनाह करना ही होगा, करना ही होगा, हाँ करना ही होगा। ठीक है, ये गुनाह करूंगी, पर तुम्हें मुझसे एक वायदा करना होगा।
1: आपा, आपा, आप मेरी जान भी मांग सकती हैं आपा।
0: तो सुनो,
1: हाँ।
0: तुम कभी मुझसे ये जानने की कोशिश नहीं करोगे कि बच्चे के माँ बाप कौन है?
1: हाँ, मुझे मंजूर है आपा, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
0: तो ठीक है, आओ मेरे साथ। जानते हो वो औरत जिसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था कौन थी? और कोई नहीं यूसुफ, तुम्हारी माँ,
1: माँ
0: जो चौधरी शमशेर सिंह की बीवी थी।
1: ओ खुदा,
0: मैंने आज तक तुम्हारे अब्बा से ये राज सिर्फ इसलिए छुपा के रखा था ताकि वो सच्चे दिल से तुम्हें अपना सके, तुम्हें पराया ना समझे। पर मुझे क्या मालूम था कि ये राज मुझे एक दिन इस तरह खोलना पड़ेगा, इस तरह।
1: या खुदा, ये मैंने क्या किया, अपनी ही बहन को ये मैंने क्या किया खुदा, ये मैंने क्या किया। आज तक मैं अपने को मुसलमान समझता रहा और चौधरी को अपना दुश्मन, और तो और मैं अपनी ही कौम से नफरत करता रहा। आज मुझे महसूस हो रहा है कि इंसान सिर्फ इंसान के रूप में ही पैदा होता है और हम उसे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई बनाते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि ना तो मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, सिर्फ एक इंसान हूं, सिर्फ एक इंसान। धर्म और मजहब से बड़ी नेमत इंसानियत है और उसकी बख्शी हुई नेमत मोहब्बत है।
0: क्या भी तुम चुपचाप ये सब कुछ हो देखते रहोगे, ये सब होते हुए देखते रहोगे, बोलो ना।
1: नहीं, कोई माई का लाल इसे हाथ तक नहीं लगा सकता। जाओ, तुम सब रास्ता छोड़ दो, मैं कहता हूँ हट जाओ। आओ बहन, आओ मेरे साथ।
2: तुम कहाँ जा रहे हो यूसुफ? इस लड़की को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो?
1: इस लड़की को इसके घर छोड़ने।
2: सोच लो यूसुफ, एक बार फिर सोच लो।
1: सोच लिया।
2: अगर तुम वहां गए तो चौधरी के आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनके सिर पर इस समय खून सवार होगा। तुम लाख उन्हें अपनी असलियत बताओ पर वो तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे।
1: बस थोड़ी ही दूर गया है, तुम चुप क्यों हो?
3: क्या बोलूं भैया, मुझे तो लगता है जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। बांह खुली और तुम बरसों से बिछड़ा भाई मेरे सामने खड़ा था।
4: बेटे का खून करने पर आमादा हो। यूसुफ, यूसुफ कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना ही खून है, तुम्हारा अपना बेटा है चौधरी, तुम्हारा अपना बेटा है।
0: मेरा बेटा? रुक जाओ शमशेर, रुक जाओ, रुक जाओ शमशेर, रुक जाओ।
4: इस्टेला बहन, तुम और यहाँ?
5: हाँ शमशेर मैं, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा।
4: तुम ये क्या कह रही हो, ये मेरा लड़का है? किस तरह से? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
5: आज से 20 वर्ष पहले की वो रात याद है तुझे?
4: हाँ।
5: जब तू अपनी बीवी को मेरे घर छोड़ गया था और तेरे घर लड़की पैदा हुई थी।
4: हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है। पर ये लड़का मेरा बेटा?
5: ये सब बाद में जान लेना शमशेर, इस समय अपनी लड़की की जान बचा, उसकी हालत नाजुक है।
4: मेरे बच्चे, चलो जल्दी इसे अस्पताल ले चलो, ले चलो इसे अस्पताल, मत छुओ मुझे। मान जा मेरे बच्चे, मान जा, तेरे जिस्म से बहता हो अब मुझसे नहीं देखा जा रहा मेरे बच्चे।
6: मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, निकल जाने दो मेरे जिस्म से कतरा कतरा खून। बुझो लो दोनों को मैं अपने खून की प्यास, हो जाने दो मुझे फिरका परस्ती पर कुर्बान। अरे बहनियों, तुमने कौम और मजहब के नाम पर इंसानियत को बांट लिया और मोहब्बत को बांट लिया, इस जमीन को बांट लिया। अगर तुम्हारा पर चले तो मजहब और कौम के नाम पर तुम हवा को बांट लो, सूरज और चांद को बांट लो, और तो और टुकड़ा टुकड़ा आसमान बांट लो।
5: भैया मान जाओ मेरी खातिर।
4: बहन
5: हाँ, मेरे बच्चे हाँ, तेरा ये खून बेकार नहीं गया, इसमें नफरत तो बदले की आग को बुझाकर इंसानियत मोहब्बत को फिर से जिंदा कर दिया है। चल चल मेरे बच्चे अस्पताल चल।
4: ठीक है,
6: मैं अस्पताल तो चला जाऊंगा, मगर आप सबको मुझसे वादा करना होगा।
4: बोलो
2: बेटे।
6: जिस जमीन को लेकर आप लोग आज तक लड़ते रहे, उस जमीन पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ बनाए जाए। बोलिए आपको मंजूर है?
7: और इस तरह हुई उम्मीद जहती की नई शुरुआत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे धरोहर के अंतर्गत नाटक टुकड़ा टुकड़ा आसमान। लेखक थे सुनील कुमार सक्सेना और प्रस्तुति थी विनोद आनंद दयाल की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मन भावन।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मन भावन में। आज मन भावन में मैं हूं आपकी रेडियो साथी नेहा। श्रोताओं, हमारा आज का मन भावन है एक ही गीतकार। तो आज एक ही गीतकार में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नौशाद के लिखे कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दर्द से, जिसे लिखा है नौशाद साहब ने और गाया है इस गीत को उमा देवी ने।

श्रोताओं, नौशाद साहब, जिनका पूरा नाम नौशाद अली था, इन्होंने लगभग 67 फिल्मों में संगीत दिया। एक बेहद अच्छे संगीतकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इनकी कलम से लिखा गीत फिल्म मदर इंडिया से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म आदमी से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और पोल हैं नौशाद के।

श्रोताओं, आज मन भावन में हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब के कुछ गीत। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं फिल्म साथी का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत है नौशाद साहब का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दुलारी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है नौशाद साहब ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन भावन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकस्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से

0: पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 12:05 हो रहे हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। ये सूचना हमें प्राप्त हुई है प्रभारी थाना निरीक्षक अमरिया जिला पीलीभीत हमें ये सूचित करते हैं कि शिव कुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम हररपुर थुरा थाना अमरिया जिला पीलीभीत दिनांक 1 जून 2026 से सुबह से लापता है ग्राम हररपुर धुरा से। शिव कुमार की उम्र 20 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 2 इंच है। चेहरा लंबा है। इनका रंग सांवला है और आंखें काली हैं। शरीर की बनावट मध्यम है। शिव कुमार ने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी है। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलती है या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना निरीक्षक अमरिया जिला पीलीभीत।

खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक अन्य सूचना। प्रभारी थाना निरीक्षक बीसलपुर जिला पीलीभीत हमें ये सूचित करते हैं कि अनुष्का पुत्री छत्रपाल निवासी मिघौना थाना बीसलपुर जनपद बीसलपुर जिला पीलीभीत दिनांक 6 मई 2026 से गुलेंदा चौराशा से लापता है। अनुष्का की उम्र 18 वर्ष है। इनका चेहरा लंबा है, रंग इनका गोरा है और आंखें काली हैं। इन्होंने हरे रंग की टी शर्ट और काला लोअर, साथ ही पैरों में सैंडल पहने हुए हैं। अनुष्का के बारे में यदि किसी व्यक्ति को कोई जानकारी मिलती है या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत। फ़ोन नंबर भी है, आप इस पर भी जानकारी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8791764651। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बा में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान।

0: मान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 12:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत आपके नाम में। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो साथी नेहा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत आपके नाम में अगर आप चाहते हैं अपनी फरमाइश हमें भेजना और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत, तो अभी हमें लिख भेजिए अपनी फरमाइश हमारी ईमेल आईडी, जी हाँ, वही जानी पहचानी पुरानी गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। इस पर मेल करके लिख भेजिए अपनी पसंद का गीत अपने नाम के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आरजू फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक, कुमार सानू ने, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है अनु मलिक का। और सुनना चाहा है इस गीत को हमारे इन सभी श्रोताओं ने। पहली ईमेल जो हमें मिली है हमारे कार्यक्रम में, वो है हमारी श्रोता की मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विजय सुरलकर और साथ में है रतनमाला सुरलकर। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, सब्जी मंडी बुलडाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा बज्रसेन। साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता हमें ई मेल लिख भेजते हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से ये ईमेल हमें लिख भेजिए। हमारे श्रोता लिखने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और इनका पूरा अब्बासी परिवार के सदस्य। समडील नबापारा से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक गुप्ता और साथ में हैं अंकुर राघव गुप्ता। अगली ईमेल हमें मिली है कार्यक्रम में फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। लिखने वाले श्रोता हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, पवन गौड़, योगेंद्र नायक। और बीरमगाम जंक्शन से ये ईमेल लिख भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अजीत भावसार, प्रमिला जी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आरजू का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। फिल्म है फूल और कांटे, संगीत है नदीम श्रवण का और बोल हैं रानी मलिक के। और सुनने के लिए इस गाने की फरमाइश की है हमारे श्रोताओं ने। पोफाली जिला यवतमल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। बलोद छत्तीसगढ़ डोंडी लोहारा से हमारे श्रोता हैं देवशंकर तोमरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तोमरिया, राधिका, प्रभा देवी और साथ में हैं मास्टर अलकबीर। बोरखेड़ पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मैंक मूड़त, चेतन नहाता, दिशा दीक्षा और कुश मूड़त। गांव खावरी अब्बल से हमारे श्रोता हैं चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अवियाना कंचव। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी, गीतिका खोरबाल और भानु प्रकाश। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी वोट। बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। भोपालगढ़ राजस्थान से ये ईमेल हमें लिख भेजी है हमारे श्रोता ने धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। इंदिरा विहार दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और साथ में है इनके अकरम आसमा फकीर। अगली ईमेल लिख भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि और पुष्पेंद्र मणि, साथ में हैं इनके नुखिलाल वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत आपके नाम में मैं हूँ आपकी रेडियो साथी नेहा और पहुँचा रही हूँ आप तक आपकी पसंद के गीत। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आदमी खिलौना है से, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज ने और साथ दिया है अलका याग्निक ने। बोल है समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ और साथ में हैं इनके रसीद बारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया अंजुम खान, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और साथ में हैं निमित्त। अगली ईमेल हमें लिख भेजी है गांधी समाधि रोड रामपुर से। भेजने वाले श्रोता हैं हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा, सुभान खान और साथ में हैं फरोज खां। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ लिख भेजते हैं हमें अपनी ईमेल। और अगली ईमेल हमें लिख भेजी है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी हिना कौसर। बारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। नई बस्ती गंज डुंडवारा से लिखने वाली श्रोता हैं हमारे मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ और कलीम अंसारी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से ईमेल लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और GS रामगढ़िया। और मनाली हिमाचल से ये ईमेल हमें लिख भेजिए हमारे श्रोता लिखने वाले हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आदमी खिलौना है का ये गीत मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में। बोल हैं आनंद बख्शी साहब के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है रामलखन और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। इसी गीत के लिए अगली ईमेल हमें लिख भेजते हैं हमारे श्रोता सेव बाटर सेव लाइफ करके, इन्होंने आगे लिख के भेजा है। और भेजने वाले श्रोता हैं गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर हिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, नवाजिश शेख, दानिश अमन अफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और साथ में हैं अभिषेक, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डिग्गू भाविक सिक्का, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभिनंद आर्या और परमानंद आर्या, सारिमपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये ईमेल हमें लिख भेजी है, लिखने वाले श्रोता हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ और साथ में है नाइना शर्मा और निवान, भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, चंडीगढ़ सिटी से ये ईमेल हमें लिख भेजी है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और वाइट फील्ड बेंगलुरु से ये ईमेल हमें मिली है हमारे श्रोता की, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिबेंदु भूषण और साथ में है संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंबल। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म रामलखन का ये गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में।

0: चिकन बनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम गीत आपके नाम में मैं हूँ आपकी रेडियो साथी नेहा, और आपकी जो ईमेल है उन तक आपकी ईमेल के जरिए आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी से, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। बोल हैं हसरत जयपुर।

के और संगीत है अनु मलिक का, और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और रिधान खुराना, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगली फरमाइश हमें मिली है जेल रोड जलंधर से, लिखने वाले श्रोता हैं हमारे अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत और फातिमा कौर। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, श्रीनिका और श्रीनिजा। अगली ईमेल हमें मिली है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, श्रोता है हमारे रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में है स्वीटी छाबड़ा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। नाला पार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हमाद। बघेरा दुर्ग से ये ईमेल हमें लिखी है हमारे श्रोता हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि कारवा और बाला साहेब कारवा। और अगली ईमेल हमें भेजी है नांदेड़ महाराष्ट्र से, लिखने वाले श्रोता हैं हमारे नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का ये गीत फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से।

श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म राजा से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गाने को सुनने के लिए हमें अपनी ईमेल लिख भेजी है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली दीपक समर और साथ में वैदिका फूलमाली, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवाया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोदपुरी, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रिहान, पिपरिया से हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। ये ईमेल हमें लिख भेजी है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, कौशिकी, दीपाली युवान और आर के राजा ने। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनबर, रिजवान, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश। गणेशपुर गंज डुंडवारा से फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं फारूक अहम, फारूक शेख, शेख समा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। गुमला झारखंड से नजमुल होदा और शखुब तंजुम, साथ में हैं इनके एसम जावेद। और गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के इनके सभी सदस्य। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स। आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म राजा का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में।

चलते चलते कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता बाजार रोड मुंगी सतु से मोहम्मद जाकिर मंसूर, कामरू निशा, शविश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगले श्रोता हैं हमारे राशिद हुसैन अंसारी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से फातिमा वली और आदिवा, रेशमा और साथ में हैं डबरू।

0: अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे अपनी पसंद के गीतों का। कार्यक्रम था गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन का 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको देते हैं जानकारी हमारी प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर रहेगा समय लोकगीतों के कार्यक्रम धरती गाती है का, जिसमें आज आप सुनेंगे कनक सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत। एक 1:30 पर रहेगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम। 2:30 पर रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का समय। 5:00 फिल्म संगीत के कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम के साथ। 5:15 जिसका समय रहेगा 5:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रस्तुत होगा 6:10 पर। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रस्तुत होगा 6:20 पर, जिसपे आज रहेगी चर्चा। नए रोपित पौधों की देखभाल, भेंट वार्ता होगी सफल महिला कृषक से, लोकगीत रहेंगे। साथ ही कृषि संकेत में रहेगा आज बायो संयंत्र लगाने हेतु सरकारी प्रयास, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और मौसम का पूर्वानुमान। 7:00 रहेगा समय प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान का। 7:31 पर रहेगा सुगम संगीत, जिसमें आज रहेंगी गजलें, कलाकार रहेंगे तलत महमूद। 8:00 फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल प्रस्तुत होगा 8:00। पर रहेगा समय कार्यक्रम चर्चा का विषय है का। 10:00 प्रस्तुत होगा कार्यक्रम दिल ढूंढता है, प्रस्तुति रहेगी असीम सक्सेना की। 1:05

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगी इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया। ये स्कीम 12 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले और उनके ज़ेर किफालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करती है।
2: 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थाई या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा।
1: उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 10 लाख असातिज़ा और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के समाजी तहफ़ के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आला ने यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1.10 करोड़ तालिब इल्म के वालदैन के खातों में DBT के जरिए 1200 रुपये फ़ी तालिब इल्म मुंतकिल किए। इसके अलावा वज़ीर आला ने कौमी सतह पर मुंतखब होने वाले क्लीन एंड ग्रीन स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी एजाज से नवाजा। वज़ीर आला आज चित्रकूट और मानिकपुर असेंबली हलकों में 951 करोड़ रुपए के 124 अवामी बहबूद के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से ज्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने काम करने के अंदाज से तरक्की को तेज़ किया है। वज़ीर आला ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए के 99 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर पूर्वांचल को तरक्की से जोड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में खरीफ सीजन की पेशरफ्त और मईशत के दीगर शोबों पर अलनीनों के मुमकिन असरात की रोशनी में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए और मानसून या ताखिर से होने वाले मानसून के असरात का अंदाज़ा रियासतों के साथ मिलकर उन इजला पर किया जाए जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्लाही इकदामात किए जा सकें। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हसास इजला में पीने के पानी के मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया। इसका मकसद 20,000 से ज़्यादा ज़रई कारोबारी अफराद और 20 लाख किसानों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़रई तरक्की, खुशहाल गाँव और खुशहाल किसानों की ज़रूरत पर जोर दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे के गबन के बावजूद यहां आने वाले अकीदतमंदों की तादाद और उनकी जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले में इंसाफ किया जाएगा और मुजरिमों को सजा दी जाएगी। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने एक खत में कहा कि वो SIT की हतमी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने खिलाफ तमाम इल्जाम का जवाब देंगे। इस दरमियान राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के 3 मुलजमीन का पुलिस रिमांड शुरू हो गया है। पुलिस उन्हें जेल से पुलिस लाइन्स ले गई। वहां तीनों मुलजमीन का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस नकदी और जेवरात बरामद करने की कोशिश करेगी जिनकी उन्होंने शनाख्त की थी। ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے کل مرزا پور میں ایک ملٹی پرپز کھاد بیج اور توسیع مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو جدید وسائل اور ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
0: میری ویب 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر۔ یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے۔ شروتاؤں دن کا 1:15 ہو رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں لوک گیتوں کا کارکرم دھرتی گاتی ہے، جس میں آج کلاکار ہیں کنک سکسینہ۔

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कनक सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत कार्यक्रम धरती गाती है मैं। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 1:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम।

नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी सखी दीपशिखा और आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कुमकुम। सखियों, जीवन की इस सांप सीढ़ी में खुशियों के पासे लिए एक बार फिर हम आ गए हैं आपके जीवन की चाल को कुछ और

सावधानियां बरतने की जरूरत है, खास तौर पर तब जब आपके परिवार का एक सदस्य कोई पालतू जानवर भी हो, क्योंकि जानवरों से इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। सखियो, हमारे पेट्स, या हम कहें कि आजकल कई घरों का अहम हिस्सा बन गए हैं ये पेट्स, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश या और कोई पालतू जानवर, वे घर में खुशियां लेकर आता है। ये जानवर हमारे बच्चों के खेल के साथी बनते हैं, वहीं बड़ों का तनाव कम करने का काम करते हैं। लेकिन ये जानवर सिर्फ अपना प्यार ही हमारे जीवन में नहीं लाते हैं, बल्कि देखभाल की जिम्मेदारी भी लाते हैं। और इस जिम्मेदारी को घर लाने से पहले अपने घर की सुरक्षा, घर वालों की सुरक्षा के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जैसे पालतू जानवरों को समय समय पर जरूरी वैक्सीन लगवाना परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक छोटा सा पेट घर के सभी सदस्यों का खिलौना जैसा होता है, इसलिए बच्चे अक्सर खेल खेल में उसे परेशान करते हैं। जैसे छोटे डॉगी की पूंछ पकड़ना, उसके कान खींचना, सोते समय उसे परेशान करना, जिसकी वजह से वे उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कभी कभी तो खेल खेल में उसके मुंह में हाथ भी डाल देते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को कभी भी पेट्स के साथ अकेला ना छोड़ें और उन्हें सिखाएं कि पेट्स के साथ कैसे पेश आना है। पेट को छूने के बाद हाथ धोने हैं, उन्हें खाना खिलाते समय परेशान नहीं करना है। अक्सर हम प्यार प्यार में पेट्स को अपने या अपने बच्चों के बेड पर भी बैठा लेते हैं, यह भी इन्फेक्शन फैलने का एक कारण बन सकता है। पहली बात तो ये कि अपने पेट की साफ सफाई का आप बहुत ध्यान रखें, और दूसरी बात उसके सोने की एक अलग जगह पर व्यवस्था करें, क्योंकि जानवरों के बालों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पनपता है। सखियों, इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आपका पेट आपका पालतू जानवर है, आपके मेहमानों का नहीं। इसलिए घर में जब भी कोई नया सदस्य आए, आपका रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी, आप अपने पेट को चेन से बांध दें ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति ना बने। और कभी अगर नाराजगी में या अनजाने में आपको आपके पेट से कुछ खरोच या छोटा सा घाव लग जाए, तो बिना लापरवाही के डॉक्टर से अवश्य मिलें। साथ ही अपने पालतू जानवर का समय समय पर हेल्थ चेकअप भी करवाते रहिए। सखियों, प्यार के साथ पालतू जानवरों को थोड़ी सावधानी की भी जरूरत होती है, तभी यह आपके परिवार के भरोसेमंद सदस्य बन पाते हैं। किसी बेजुबान के प्रति करुणा का भाव रखना ही सच्ची इंसानियत है। फिर चाहे आप किसी बेसहारा जानवर को पालतू बनाकर दिखाएं, या फिर सैकड़ों बेसहारा सड़क पर घूमते जानवरों की सेवा करके। तो आइए आपको सुनाते हैं करुणा और अपनेपन की एक सच्ची कहानी। मंगलुरु की गलियों में जब ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय की पहली चुस्की से करते हैं, तब एक महिला अपने चूल्हे पर एक साथ 60 किलो चावल चढ़ा चुकी होती है, किसी दावत के लिए नहीं, उन बेजुबान बेसहारा कुत्तों के लिए जिनके हिस्से में ना घर है ना खाने का ठिकाना। और इन बेसहारों को सहारा देने वाली महिला है रजनी शेट्टी। अपने छोटे से किराए के घर में रजनी 60 से अधिक आवारा कुत्तों को आश्रय देती है। पूरे शहर में 700 से ज्यादा कुत्तों को खाना खिलाना भी इन्हीं की जैसे जिम्मेदारी बन गया है। बचपन से जानवरों के प्रति उनका प्रेम आज उनकी पहचान बन चुका है, और उनकी कहानी सिर्फ बेजुबानों का पेट भरने की नहीं, बल्कि उनकी जान बचाने से लेकर घायल जानवरों के इलाज करने की भी है। कई बार किसी गहरे कुएं में जब कोई जानवर गिर जाता है, तो वे खुद रस्सी पकड़कर नीचे उतर जाती हैं उसकी जान बचाने के लिए, और ऐसा वे एक दो बार नहीं, लगभग 161 बार कर चुकी हैं। और इस सफर

0: में उनका परिवार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। साथ ही कुछ स्थानीय लोग अपने जन्मदिन या किसी खास अवसर पर इन बेजुबानों के लिए मदद का हाथ बढ़ा देते हैं। कहते हैं दुनिया बड़े बड़े बदलावों से बदलती है, लेकिन कभी कभी एक महिला, एक चूल्हा, 60 किलो चावल और करुणा से भरा एक दिल भी किसी शहर की तस्वीर बदल देता है। रजनी शेट्टी हमें याद दिलाती हैं कि इंसान होने का सबसे सुंदर अर्थ शायद यही है, किसी ऐसे का सहारा बन जाना जो अपनी तकलीफ शब्दों में भी नहीं कह सकता। सखियों, हमें हमेशा आभारी होना चाहिए उस ईश्वर का जिसने हमें खूबसूरत जिंदगी का ये तोहफा दिया, और वह भी इंसान बनाकर। क्योंकि अगर हम इंसान नहीं जानवर होते तो ना सपने देख पाते और ना उन्हें पूरा कर पाते। साथ ही धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि हमारे साथ खड़ा है हमारा पूरा परिवार, जिनके सहयोग से उन सपनों को मिल जाते हैं दोगुने पंख। खास तौर पर अगर सपने देखने वाली आंखें एक बेटे की हों। कैसे, ये एक वार्ता के माध्यम से समझा रही हैं हमारी आज की वार्ताकार श्रीमती सुषमा रानी सक्सेना। तो सुनिए बेटियों के सपने और परिवार का सहयोग विषय पर ये वार्ता।
1: परिवार का हौसला और विश्वास साथ हो तो बेटी के हर सपने में नई बात हो। वो उड़ान भरती हैं ऊंचे आसमानों की जब अपनों के प्यार की हरदम बरसात हो। जी हाँ, बेटियों के सपनों को सच करने में परिवार का साथ और प्यार सबसे बड़ा हौसला होता है। जब परिवार हौसला बढ़ाता है तो बेटियां आसमान तक छू लेती हैं। इसलिए बेटियों के सपनों को सच करने के लिए परिवार का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। जब माता पिता अपनी बेटियों पर विश्वास करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे ना केवल आत्मनिर्भर बनती हैं बल्कि पूरे परिवार और समाज का नाम रोशन करती हैं। बेटियों को यह एहसास दिलाना कि वे किसी से कम नहीं हैं, उनके विचारों और क्षमताओं पर भरोसा करना उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। बेटियों की शिक्षा में कोई कमी न छोड़ना और उनके सपनों के अनुसार सही कैरियर चुनने में मदद करना परिवार का सबसे बड़ा सहयोग होता है। परिवार को चाहिए कि वे बेटियों पर केवल घर के कामों का दबाव ना डालें बल्कि उन्हें बेटों के समान आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दें। पंख दिए हैं सपनों के और अपनों ने दिया है साथ, हर मुश्किल रहा आसान हो जाती है जब हो पिता का हाथ। माँ का दुलार और अपनों का अटूट विश्वास, यही तो है बेटी की सबसे बड़ी ताकत और आस। बेटियों के सपने और परिवार का साथ एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक परिवार अपनी बेटी के सपनों को समझता है और उसका समर्थन करता है तो वह न केवल बेटी बल्कि पूरे समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। हर बेटी की अपनी अलग आकांक्षाएं होती हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई खिलाड़ी तो कोई कलाकार बनना चाहती है। परिवार का काम उसे पंख देना है ताकि वह बुलंदी तक जा सके। बेटी की सफलता की नींव घर से ही शुरू होती है। माता पिता का विश्वास और प्रोत्साहन उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। कई परिवारों में आज भी बेटियों की पढ़ाई लिखाई और कैरियर को लेकर संकीर्ण सोच होती है। वे बाहर के माहौल और सुरक्षा की चिंताओं के कारण बेटियों को दूर शहर या विदेश में पढ़ने या नौकरी करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन प्रगतिशील परिवार इस सोच को बदलकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। जब बेटियां अपने सपनों को पूरा करती हैं तो वे अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करती हैं जिससे पूरा परिवार गौरवान्वित होता है। बेटी की उड़ान में जो परिवार का साथ होता है उसके हर कदम पर एक नया विश्वास होता है। छू लेगी वो हर मुकाम जो उसने सोचा है क्योंकि अपनों का प्यार ही उसके सबसे बड़ी ताकत होता है। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल से ही ये कहावत चली आ रही है कि पढ़ेगी बेटी सुखी होगा परिवार। एक बेटा पढ़ता है तो वह केवल स्वयं को शिक्षित करता है, लेकिन एक बेटी जब शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देती है। वर्तमान समय में बेटियों को केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, वे जीवन के हर क्षेत्र में आसमान छू रही हैं। ऐसे में उनके सपनों को पंख देने के लिए परिवार का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। माता पिता का यह कहना कि बेटी तुम यह कर सकती हो, किसी भी बेटी के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। रूढ़िवादिता को तोड़कर बेटियों को बेटों के समान उच्च शिक्षा के अवसर देना परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। जब परिवार बेटियों को उनके कैरियर और जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने की छूट देता है और हर कदम पर उनके साथ खड़ा होता है, तो वे कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानती हैं और इसके सकारात्मक परिणाम पूरे समाज को मिलते हैं। माता पिता व परिवार का सहयोग प्राप्त कर बेटियां पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं, जिससे न केवल उनका बल्कि उनके पूरे परिवार का जीवन स्तर सुधरता है। परिवार के सहयोग से ही बेटियां अंतरिक्ष, खेल, राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाती हैं। यह समाज की उस सोच को बदलती हैं जो बेटियों को बोझ समझता है, क्योंकि आजकल बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। एक अच्छी बेटी परिवार की भावनाओं और संस्कारों को धर्म से बांधकर रखती है। वह अपने माता पिता और पूरे परिवार को हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। प्रश्न ये उठता है कि क्यों जरूरी है परिवार का साथ? एक परिवार ही बेटी को सुरक्षित माहौल दे सकता है। एक मजबूत पारिवारिक ढांचा बेटियों को बिना डर के लक्ष्य और उड़ान चुनने की आज़ादी दे सकता है। परिवार ही बेटियों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जब परिवार बेटियों की क्षमताओं पर विश्वास करता है तो वे खुद पर भरोसा करना सीखती हैं। वे परिवार में सशक्तिकरण की भूमिका निभाती हैं। जब माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य उनकी बात सुनते हैं और उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी देते हैं व उनकी प्रगति को बढ़ावा देते हैं, तो समाज में एक नई और प्रगतिशील सोच का निर्माण होता है। पंख फैलाकर जब उड़ने को तैयार है बेटी, परिवार का सहयोग मिले तो आसमान भी पार है बेटी। परिवार का सहयोग मिले तो आसमान भी पार है बेटी। और बेटी के लिए तो सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक श्लोक स्कंद पुराण में भी दिया गया है। यह श्लोक बेटी के महत्व और उसकी महिमा को बताता है। दश पुत्र समाकन्या दश पुत्रान प्रवर्धयन यत फलम लभते मर्ते इस्त लभ्यम कन्याए एकया। अर्थात एक सुयोग्य और गुणवान बेटी दस पुत्रों के समान होती है। दस पुत्रों का लालन करने से उतना पुण्य नहीं मिलता जितना एक बेटी के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। एक बेटी की उड़ान में माता पिता और परिवार का सहयोग सबसे बड़ा ईंधन होता है। जब परिवार समाज की रूढ़िवादिता को दरकिनार करके अपनी बेटी की प्रतिभा पर विश्वास करता है तो वह इतिहास रचती है। परिवार को चाहिए कि वे अपनी बेटी पर पाबंदियां लगाने की जगह उन्हें सही और गलत का फर्क सिखाकर आत्मनिर्भर बनाएं। जब परिवार ये समझता है कि रसोई के साथ साथ बेटियां आसमान भी नाप सकती हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। रोक सके जिसे ना दीवारें ना कोई पुरानी रीत, परिवार के संग से बेटी की हर उड़ान है जीत। आज भी कई परिवारों में बेटियों के सपनों को शादी और सामाजिक लोकलाज के डर से दबा दिया जाता है। परिवार के असहयोग से कई प्रतिभाशाली बेटियां घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाती हैं। इससे न केवल एक बेटी का भविष्य नष्ट होता है बल्कि पूरा समाज एक कुशल नेतृत्व और प्रतिभा से वंचित रह जाता है। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तभी पूरी तरह सार्थक होगा जब प्रत्येक परिवार अपनी बेटी के सपनों का पूरी तरह समर्थक बनेगा। कुछ परिवारों में देखा जाता है कि वे लोग बेटियों का जन्म ही नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि उनके घर सिर्फ बेटे का ही जन्म हो, लेकिन वह लोग यह भूल जाते हैं कि अगर बेटी का जन्म नहीं होगा तो बहू कहाँ से लाएंगे, बहन कहाँ से लाएंगे और माँ कहाँ से लाएंगे। कुछ बेटियों के माता पिता पढ़े लिखे ना होने के कारण लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं और बेटियों के साथ भेदभाव करने लगते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि अगर बेटियों को सही अवसर दिए जाएं तो बेटियां बेटों से भी ज़्यादा आगे निकल सकती हैं। भ्रष्ट मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि बेटे ही सब कुछ हैं, वही उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और उनकी सेवा करेंगे, लेकिन यह मानसिकता गलत है। अगर बेटियों को समाज में पूरी तरह से बराबरी का अधिकार मिल जाए तो वे बेटों से भी कहीं ज़्यादा आगे निकलती हैं और माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। पंख हौसलों के देकर परिवार ने बढ़ाया मान है, बेटी के हर सपने के पीछे अपनों का वरदान है, आसमां को छूने की चाहत अब ना कोई दूरी है, परिवार के इस सहयोग से हर मंजिल पूरी है, परिवार के इस सहयोग से हर मंजिल पूरी है। अतः बेटियों के सपने पूरे करने के लिए उन्हें बेटों के समान ही अवसर और प्यार मिलना चाहिए। जब एक परिवार अपनी बेटी के सपनों को अपना सपना बना लेता है और उसके मार्ग की हर बाधा को दूर करता है तो वह बेटी उस परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ उभरती है। परिवार का सहयोग ही उसके लिए संजीवनी बूटी है जो एक साधारण बेटी को असली ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। बेटियों के पास सपनों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस उन्हें मिलने वाले अवसरों और सहयोग की। बेटियों को पाबंदियों के बजाय प्यार और सम्मान और सहयोग की ज़रूरत है ताकि वे खुले आसमान में अपना पंख फैला सकें। बेटियों के सपनों को साकार करना किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा निवेश और गर्व की बात है। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी बेटियों के सपनों को कभी टूटने नहीं देंगे और उन्हें बेटों के समान अवसर व अधिकार देंगे। जब बेटियां शिक्षित और सशक्त होंगी तभी हमारा देश सशक्त और विकासशील होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, न रोक सको तो रोको, ये बेटियां हैं उड़ान भरती, परिवार के सहारे से ये मुश्किल राहें भी आसान करती, उनके सपनों को जो दे पंख वो घर बार महान है, बेटी की कामयाबी में ही छुपी सबकी पहचान है, बेटी की कामयाबी में ही छुपी सबकी पहचान है।
0: सखियों, अभी आप सुन रही थीं श्रीमती सुषमा रानी सक्सेना की वार्ता, विषय था बेटियों के सपने और परिवार का सहयोग। सखियों, जीवन में जब किसी अपने का साथ हो तो हर राह आसान हो जाती है, हर सफर सुहाना हो जाता है। और बचपन में ये साथ माता पिता का होता है, शादी के बाद पति का और बच्चे हो जाने के बाद फिर से हमारे परिवार का। सखियों, एक अच्छा जीवन साथी मिलना किस्मत की बात है, पर एक अच्छा जीवन साथी बनना हमारे हाथ में है। और जब एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो उससे जो दूरी होती है किसी भी कारण, चाहे वो ऑफिस की वजह से दूर जाना पड़े उसे या एक शहर से दूसरे शहर में हमें रहना पड़े, तो वो दूरी जो है वो खलती है और मन से कुछ ये आवाज़ निकलती है,

जाते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी कामकाजी सखियों की चुनौतियों को कुछ कम करने के लिए आज हम लेकर आए हैं कुछ मॉनसून टिप्स। देखिए, इस मौसम में सही फैब्रिक का चुनाव सबसे जरूरी है, ताकि बारिश में भीग जाने पर आपको अनकंफर्टेबल यानी असहज महसूस ना हो। इसलिए इस मौसम में आप रेयन, जॉर्जेट या नायलॉन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करें, कॉटन फैब्रिक से बचें, क्योंकि ये फैब्रिक पानी सोख लेता है और बहुत देर बाद जाकर सूखता है। और नायलॉन, रेयन जैसे जो फैब्रिक हैं, ये हल्के होते हैं, इसलिए भीग जाने की स्थिति में जल्दी सूख जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। साथ ही कोशिश ये भी करें कि अगर आप कुर्ती लेगिंग्स पहन रही हैं, तो कुर्ती की लंबाई नी लेंथ यानी घुटनों तक हो, और लेगिंग्स की जगह अगर आप एंकल लेंथ पैंट्स पहनेंगी तो ये आपको ज़्यादा आराम देंगी। अब थोड़ा ध्यान फुटवेयर पर भी डाल लेते हैं। तो बारिश के मौसम में जूते पहनना अवॉइड करें, और लेदर के फुटवेयर या ऊंची हील से भी बचना ही चाहिए। इनकी जगह आप वाटरप्रूफ वैलीज, फ्लैट सैंडल्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखिए अक्सर जब बरसात में जूते भीग जाते हैं तो वो पूरा दिन गीले रहते हैं, और इसकी वजह से हमारे पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात आपके हैंडबैग की कर लेते हैं। तो इस मौसम में आप अपने रूटीन पर्स की जगह वाटरप्रूफ बैग का इस्तेमाल करें, ताकि बारिश में भीगने की स्थिति पर भी आपके जो पर्स में रखा सामान है वो सुरक्षित रहे। सखियों, अगर आपको जॉब की वजह से रोज सफ़र करना पड़ता है तो अपने साथ एंटी बैक्टीरियल वाइप्स या डिस्पोजेबल टॉयलेट सीट कवर रखें, जिसे आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते समय यूज़ करें, ताकि किसी भी तरह के यूरिन इन्फेक्शन से आप सुरक्षित रहें। सखियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा ये आप हमें पत्र मिला aarrampur@gmail.com पर मेल करके बता सकती हैं। आप आज का साथ इतना ही। दीपशिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की

0: रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइना चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ चल डमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमरीका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओ इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।

0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्स-रे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
5: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
6: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग।
9: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मेजर वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव पर संपन्न हो रही है FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसार सेवा मुंबई के कार्यक्रम विधिवत उपलब्ध रहेंगे। संध्या 5 बजे हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर एक साथ आरंभ होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
1: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
0: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हम है ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो तो भी शिकायत।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
0: हाँ,
1: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
0: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं। ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
0: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
1: बिल्कुल हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए, और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर, चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
0: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
1: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
0: बिल्कुल, साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी, बहुत फेमस है कोटा डोरिया।
1: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है इस साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
0: तो हमारी कौन सी सखी है जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती है कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती है ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
1: अच्छा।
0: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है अनार से, जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है। चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो गाना
0: तो
1: बड़ा अच्छा था, है
0: ना? बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
0: क्या बात,
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहे, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं, किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई हैं, है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
1: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल

0: जाते हैं, और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है,
1: बिल्कुल
0: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
0: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है। गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियों और सखा तो भी बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
0: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती है। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है, और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
0: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही है, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
1: चलिए,

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाती, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात

0: नहीं है, और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखती है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई, ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं। शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं। ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल बना देती है। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुनिए।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब

0: 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास अभी जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे जो बुनकर थे उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था और हाथ से बुनाए गए जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल। और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
0: और सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी कोटा साड़ी कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
1: हैं। बिल्कुल सही। और वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
0: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
0: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है तो जैसे और जो चीजें ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना बहुत
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है
0: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल। और इसे हल्के में भी मिलती है आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है छोटी सी कस्बा है कैथून जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी।
1: बिल्कुल।
0: और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल। और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही

0: टैक्सी वालों ने पापा को देखा।
1: रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी
0: हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए, और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
0: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार, तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
0: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर हमें ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वही हम चिंता में

0: लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या हो?
1: क्या होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता के जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है। किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को डांढस बधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना,
0: सही कहा,
1: और कर्मी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़े। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नीयत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।